क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुतफे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो इनको कौन जिंदा करेगा। कह दो कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया था और वो हर तरह की तखलीक को जानता है, वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उनसे आग निकालते हो। भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि इनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों? और वो कुछ पैदा करने वाला कामिल इल्म वाला है।

हाँ, जो कोई फरिश्तों की किसी बात को चोरी से झपट लेना चाहता है तो जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लग जाता है। तो इनसे पूछो कि इनका बनाना मुश्किल है या जितनी खलकत हमने बनाई है उसका। इन्हें हमने चिपकने वाले गारे से बनाया है। हाँ, तुम तो ताज्जुब करते हो और ये मजाक उड़ाते हैं, और जब इनको नसीहत की जाती है तो नसीहत कबूल नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो ठट्ठे करते हैं और कहते हैं कि ये तो खुला जादू है।

وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? असल बात यह है कि आज ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल और जवाब करेंगे। पैरोकार अपने पेशवाओं से कहेंगे कि तुम ही हमारे पास दाई तरफ से आते थे। वो कहेंगे, नहीं बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले न थे और हमारा तुम पर कुछ जोर न था बल्कि तुम ही सरकश लोग थे। सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई कि अब हम अजाब के मजे चखेंगे।

الحق وصدق المرسلين إنكم لذاكرون

मगर जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं यही लोग हैं जिनके लिए रोजी मुकर्रर है यानी मेवे, और उनका एजाज और इकराम किया जाएगा। नेमत के बागों में एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे। शराब लतीफ के जाम का उनमें दौर चल रहा होगा जो रंग की सफेद और पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। न उससे दर्द सर हो और न वो उससे बहकें। और उनके पास हूरें होंगी जो निगाहें नीची रखती होंगी और आंखें बड़ी बड़ी, गोया वो गर्दो गुबार से महफूज अंडे हो।

ये मेहमानी अच्छी है या थूहर का दरख्त, हमने उसको जालिमों के लिए बला बनाया हुआ है। वो एक दरख्त है कि जहन्नम की तह में उगेगा, उसके खोशे ऐसे होंगे जैसे शैतानों के सर, सो वो उसी में से खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर उस खाने के साथ उनको खौलता हुआ पानी मिलाकर दिया जाएगा, फिर उनको दोजख की तरफ लौटाया जाएगा। उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह ही पाया था, सो वो उन्हीं के पीछे दौड़े चले जाते थे, और उनसे पेशतर बहुत से पहले लोग भी गुमराह हो गए थे, और हमने उनमें खबरदार करने वाले भेजे, सो देख लो जिनको खबरदार किया गया था उनका अंजाम कैसा हुआ।

हां अल्लाह के चुने हुए बंदों का अंजाम बहुत अच्छा होता है। और हमको नूह ने पुकारा सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं, और हमने उनको और उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से नजात दी, और उनकी औलाद ही को हमने बाकी रहने वाला बना दिया, और हमने पीछे आने वालों में उनका जिक्र जमील बाकी रखा, यानी तमाम जहानों में कि नूह पर सलाम हो। नेकुकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे।

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
1: अलाए मदीने मन्नण कडहिं थींदो, हाय हाय।

اساں ملک مدینے جا پاندیڑا

परे दाह दिया तक कहीं।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: तव्हांखे तव्हांजे क्लास ताईं वठी वञा। हीअ आहे तव्हांजी क्लास।
2: कॾहिं ईअं थींदो आहे त ॿारनि जे सिखण समझण जी सलाहियत महदूद लॻंदी आहे।
3: अस्सलाम अलैकुम ॿारो।
2: मसालो तालीम न पर खुराक में ज़रूरी ग़िज़ा जी घटिताई हूंदी आहे।
3: तव्हांजो छा नालो आहे?
1: मैडम, तव्हां स्कूल ऐं ॿारनि जो हाल ॾिसी परेशान थी वियो। पढ़ाई में बिल्कुलु हुननि जी दिलि न आहे लॻंदी, बार बार फेल थींदा आहिनि।
3: तव्हां पंहिंजो लंच बॉक्स ॾेखारियो। हिते कंहिंखे हिननि जो ख़्याल ई न आहे आयो। ॿारो, अॼु खां असां हिकु नओं सिलसिलो शुरू कंदासीं। असां सिखंदासीं त सिहतमंद खाधो कहिड़ो हूंदो आहे। छा ठाहियो अथई अहमद?
2: मुतवाज़िन ग़िज़ा महांगी न आहे हूंदी। बहितरीन ग़िज़ा, ॿारनि जो बहितरीन मुस्तक़बिल। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफ़ां।
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा बेहतरीन सर्विस स्पेयर दे मर्शाद ऑटोस ते पैये, जेमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा शाद ऑटोस, हालानी रोड मेहरापुर। राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
5: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से बैंक अलबीब और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा। छो फिर
7: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे
8: अदा? दुकान जी मशहूरी कराई अथई
7: न अदा?
9: यार अॼुकल शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरा पर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरा पर ते पब्लिक कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
7: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे।
7: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
9: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज
10: 0301-399-2836।
11: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
12: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں کہاں کس کی طرف الى الله اللہ کی طرف کون ہے وہ مولاهم الحق ان کا سچا مولا ان کا حقیقی مولا یعنی انسانوں کی روح جب قبض ہو جاتی ہے تو سب انسانوں کی واپسی اللہ کی طرف ہوتی ہے کیونکہ اسی نے بھیجا واپسی بھی اسی کی طرف ہوگی اسی کے اذن سے یہاں ہے اور اسی کے حکم سے واپس جانا ہے

0: हे वट एड़ी शयूं खांदी कर सेहत ठीक रहंदी
1: तमा खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी ते मां के खाइंदम
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पियारण वाली माओ जी बेहतरीन गिजा माओ ए बार इन्हीं जो हक है ही पैगाम कश फाउंडेशन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो
4: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए
5: अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एं ग्लोइंग फ्रेंडली रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए पर आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड एज ब्यूटी वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम Glowing Skin Product by Biocon International Pakistan
6: خوش شرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میرا ہومیوپیتھک کنسلٹ سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچر سومر تے صبح 10 کھان شائن ہر چر تے بغیب کیو ویندو ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو بدن میں اچ کھنگ ٹی بی مادے جی جل ہیپاٹائٹس بی سی گرد

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खाक फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ
1: क्या देख रहे हो
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की आप देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
4: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

थोरी अर्ज़ कुझु कर, कुझु कर।

Hello.

सऊदी अरब जे वली अहद कतर जे अमीर ऐं गॾियल अरब इमारात जे सदर ईरान ते हमिलो रोकण जी दरख़्वास्त कई आहे। ईरान ते अॼु हमिलो तय थियल हो, जेको रोकियो वियो आहे। संजीदा ॻाल्हियूं जारी आहिनि। अहिड़ो मुआदो चाहियूं था जेको न रुगो अमरीका पर विच ओभर समेत समूरनि मुल्कनि लाइ क़बूलियत जोगो हुजे। मुआदे जी अहम ॻाल्हि इहा आहे त ईरान कंहिं बि क़िस्म जा एटमी हथियार न ठाहिण जी ख़ातिरी कराए। मुआदो न थियण सूरत में फ़ौज खे तयारु रहण जो हुकुम ॾिनो आहे।

अमरीका ईरान में जंग ॿीहर शुरू थियण जा ख़दशा वधी विया। अमरीका जो बारूद ऐं हथियार सां भरियल जहाज़ इसराइल मोकिलण जो सिलसिलो तेज़ करे छॾियो। इसराइली मीडिया चयो आहे त अमरीका ईरान ते हमले जी तयारी करे रहियो आहे। हथियारनि सां भरियल कार्गो जहाज़ इसराइल पहुची रहिया आहिनि। बासरान इनकलाब जी अमरीका खे ॿीहर ग़लती वरजाइण ते फैसलातो जवाब ॾियण जी धमकी। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फसल शेखारसी चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ नई जहाज जो जवाब फैसलातो ऐं तबाह कंदड़ हूंदो। पाकिस्तानी सालसी ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। तहरान अमरीका तजवीज़ुनि ते जवाब ॾेई चुको आहे। यूएई समेत खिते में मौजूद कंहिं मुल्क सां दुश्मनी नाहे, ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बाकाई चयो आहे त ईरान यूरेनियम जे रचाव बाबति पंहिंजे हक़ तां हथ न खणंदो, नई मामले ते कंहिंसां ॻाल्हियूं कंदो। ईरान जा जंग जे ख़ात्मे लाइ मुतालबा वाज़े आहिनि। यूएई खे कुझु महीननि जी वाक़ियनि खां सबक़ सिखणु घुर्जे। आबना हुरमत बाबति ईरान जा ओमान ऐं ॿियनि सां राब्ता बि जारी आहिनि।

पहिरीं शिकस्त खाई ई ॿाहिरि निकितो नाहे निकितो ॿीहर ललकारियो त भारत जो जाग्रफ़ाई तब्दील करे खेसि तारीख़ जो हिसो बणाए छॾींदासीं। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त अमरीका ऐं इसराइल में ॿीहर जंग जो इम्कान नाहे। ॿिए मुल्क जंग नथा चाहिनि। 28 तरमीम ज़रिए 18 तरमीम खे ख़तम करण वारियूं ॻाल्हियूं बि शोर शो आहिनि।

0: जी
1: अदा नौ दुकान खोलियो तुम पर हले ही न तो छाक जे
0: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेट हलंदी
0: हाँ दा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
0: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Aashiq Honda Showroom Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Group Pur Etmat. Aimba Akhtar 3S Dealer. Aashiq Honda Motors Mehrapur. Jite nai motorcycle ji sale. Company aje mukarar kel rate de dastiyab hai. Service Center. Atlas Honda Limited jo warranty claim center area. Jite Honda Motorcycle ji behtareen service kai vendi hai. Honda company aja tamam genuine spare parts. Khususi riyat te maujood. Aashiq Honda Motors te. Pahenje Honda Motorcycle ji tuning karayo. Computerized Japanese stitching machine je zariye. जिन्हे में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फे

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: अमरीकी सदर ट्रंप जो सऊदी अरब कतर ए यूएई की दरख्वास्त ईरान से हमलो रोकने जो ऐलान अमरीकी सदर ट्रंप चवे तो सऊदी अरब के वली अहद कतर के अमीर कटल अरब इमारात के सदर ईरान से हमलो रोकने की दरख्वास्त कई है। ईरान से अज हमलो तय थियल हो जो रोको वो है। संजीदा गालू जारी है। अड़ो मुहिदो चाहूँ था जो न रुगो अमरीका पर विच ओभर समेत समूरन मुल्क कबूलियत जोगो हो। मुहिदे की अहम गाल है तो ईरान कें भी किस्म जी हथियार रखने की खातरी कराए। अमरीकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई ला ईरान पूरी तरह तैयार। ईरानी खातम लंबिया ब्रिगेड चवण है तो बीहर हमलो किया तो ईरानी फौज ट्रेगर दबाने लाइ तैयार है। तकड़ी फैसलाते ताकतवर वड़े पैमाने जवाबी कार्रवाई कई वी ईरानी अवाम की हर सतह से दिफा यकीनी बनाया वेंदो।

0: अमरीका ईरान सां ॻाल्हियूं बहाल करण लाइ पंज शर्त रखी छॾिया। अमरीका जो ईरान खे जंग में थियल नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियण खां इनकार। 400 किलोग्राम बचाव थियल यूरेनियम हवाले करण जो मुतालबो। ईरान खे रुगो हिकु एटमी ठाक खे फाल करण जी आछ। ईरान जे ज़ब्त कयल असासनि मां 25% जारी करण खां बि इनकार। फारस न्यूज़ एजेंसी मूजिबि ईरान शर्त क़बूल करे बि वठे तॾहिं बि अग्राही जो ख़तरो रहंदो। ईरान जो मौक़िफ़ु आहे त समूरनि जंगी कारवायुनि ऐं पाबंदियुनि जो ख़ात्मो कयो वञे। अबन हुरमस ते ईरान जे हक़ खे तस्लीम कयो वञे। ऐं सिंधड़ी भरिसां पसंद जे परणे तां पलान में अगवा कयल टे निगरियूं बाज़ियाब। पुलिस मूजिबि ॻोठ बाज़मरी में कार्रवाई करे टिनी निगरनि खे बाज़ियाब करायो वियो। निगरनि खे ॿ ॾींहं ॻोठ अबू बकर जुण जो मां अगवा कयो वियो। मेडिकल खां पोइ निगरनि खे वमन पुलिस हवाले कयो वियो आहे। दहशतगर्दी एक्ट तहत निगरनि जे अगवा जो केस दाख़िल कयो आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
4: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
6: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 03013992836।
7: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर वक्त
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 12 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: दहशतगर्दी के खात्मे लाइ पुरज़म आहे. पाक फौज अवाम जी हिमायत सां दहशतगर्दी के खात्मे लाइ पुरज़म आहे. पाकिस्तान जी तरक्की के प्रोपेगेंडा या परडेही सरप्रस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी ज़रिए रोके नथो सघिजे. जदीद जंगी तरीक़ेकार तेज़ीअ सां तब्दील थी रहियो आहे. फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी मल्टी डोमेन ऑपरेशन टिनी फ़ौजनि में गॾियल सहकार ते ज़ोर भरियो.

0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हिकु ॾींहं जे दौरे ते कोयटा पहुची वियो। एयरपोर्ट ते गवर्नर जाफर खान मधुखेल वज़ीर आज़म जो आदर भाव कयो। वज़ीर आज़म नेशनल एक्शन प्लान जी सूबाई एपेक्स कमेटी जे इजलास जी सदारत कंदो। वज़ीर आज़म कोयटा में सूबाई क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो ऐं अहम फ़ैसिला कया वेंदा। अमरीकी सदर ट्रंप जो सऊदी अरब, कतर ऐं यूएई जी दरख़्वास्त ते ईरान ते थियल हमिलो रोकण जो ऐलान। ट्रंप चयो आहे त सऊदी अरब जे वली अहद कतर जे अमीर ऐं गडि॒यल अरब इमारात जे सदर ईरान ते हमिलो रोकण जी दरख़्वास्त कई, जंहिं ते ईरान ते अॼु थियल हमिलो 2-3 ॾींहनि लाइ मुलतवी कयो आहे। लॻे थो त ईरान सां डील जो सुठो मौक़ो आहे। अहिड़ो मुआदो चाहियूं था जेको न रुगो अमरीका पर विचो भर समेत समूरनि मुल्कनि लाइ क़बूलियत जोॻो हुजे। अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो मक़सदु हथियार फिटा करणु नाहे। ईरान जे मफ़ादनि, इज़त, वक़ार जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पेशान चयो आहे त तेहरान कंहिं बि सूरत में ईरान ऐं ईरानी अवाम जे हक़नि तां हथ न खणंदो। समूरी तवानाई सां गॾु ईरानी अवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं। ईरानी फ़ौज जो हथ बि ट्रिगर ते आहे। हमिलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। ईरानी खातब लंबिया ब्रिगेड जो चवणु आहे त ॿीहर हमिलो कयो वियो त ईरानी फ़ौज ट्रिगर दॿाइण लाइ तयारु आहे। तकिड़े फ़ैसिला ते ताक़तवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। ईरानी अवाम जो हर सतह ते दिफ़ा यकीनी बणायो वेंदो। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 2 ॾींहनि जे दौरे ते अॼु चीन पहुचंदो। रवानगीअ खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हाईंदे रूसी सदर जो चवणु हो रूस ऐं चीन जा मज़बूत लाॻापा आलमी सतह ते इस्तेहकाम जी ताक़त बणिजी चुका आहिनि। मास्को ऐं बीजिंग जो मक़सदु कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ इतिहाद ठाहिण न पर आलमी अमुन ऐं खु़शहालीअ लाइ गॾियल सहकार करणु आहे। रूस ऐं चीन गॾियल क़ौमुनि ऐं शिंघाई तावन तंज़ीमुनि जहिड़नि प्लेटफॉर्म तां गॾिजी आलमी ऐं इलाक़ाई मसला हल करण लाइ कमु करे रहिया आहिनि। ऐं सिंधड़ी भरिसां बसुनि जे परणे तां पलांद में अगवा कयल 3 निगरियूं बाज़ियाब। पुलिस मौजिब गोट बाज़परी में कार्रवाई करे 3 निगरनि खे बाज़ियाब करायो वियो आहे। निगरनि खे 2 ॾींहं अॻु गोट अबू बकर जुणे जो मां अगवा कयो वियो हो। मेडिकल खां पोइ निगरनि खे वुमेन पुलिस हवाले कयो वियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी, वारनि ऐं नहनि, एलर्जी, कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569, 0300-3583-569।

0: मौजूद आहिन। फौजी बाहरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-1800-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453।
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत-ए-मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।

0: 12:15 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Michael Habib, Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफ एम नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: बलूचिस्तान में जटादार अमल लाइ आवाम दोस्त पॉलिसी ऐं बहितर हुकमरानी अणठल आहे. पाकिस्तान जी तरक़ी रोकण जी कोशिश कंदड़ सदा ई नाकाम थींदा. कोयटा में फ़ौजी ऑफिसर्स खे ख़िताब कंदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त हथियारबंद फ़ौज हर क़िस्म जी दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे जे लाइ पुरज़म आहे. पाक फ़ौज आवाम जी हिमायत सां दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे जे लाइ पुरज़म आहे. पाकिस्तान जी तरक़ीअ खे प्रोपेगंडा या परवेही सरपरस्तीअ में थींदड़ दहशतगर्दी ज़रिए रोके नथो सघे. जदीद जंगी तरीक़ेकार तेज़ीअ सां तब्दील थी रहियो आहे. फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी मल्टी डोमेन ऑपरेशन ऐं टिन्ही फ़ौजनि में गॾियल सहकार ते ज़ोर भरियो.

वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हिकड़ी जे दौरे ते कोयटा पहुची वियो। एयरपोर्ट ते गवर्नर जाफर खान बदुखेल वज़ीर आज़म जो आदर भाव कयो। वज़ीर आज़म नेशनल एक्शन प्लान जे सूबाई एक्सपेक्ट कमेटी जे इजलास जी सलाहत कंदो। वज़ीर आज़म कोयटा में सूबाई क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो, अहम फ़ैसला कया वेंदा।

0: अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जो मक़सद हथियार फिटा करणु नाहे। ईरान जी मफ़ादत, इज़त ऐं वक़ार जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पशान चयो आहे त ईरान कंहिं बि सूरत में ईरान ऐं ईरानी अवाम जे हक़नि तां हथ न खणंदो। समूरी तवानाई सां गॾु ईरानी अवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं।
1: ईरानी फ़ौज जो हथ बे ट्रिगर ते आहे। हमिलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। ईरानी ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड जो चवणु आहे त ॿीहर हमिलो कयो वियो त ईरानी फ़ौज ट्रिगर दॿाइण जे लाइ तयारु आहे। तकिड़े फ़ैसिलाइते ताक़तवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। ईरानी अवाम जो हर सतह ते दिफ़ा यकीनी बणायो वेंदो।
0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कतरी हम मनसब सां फोन ते राब्तो। बतरफन लागापन ऐं विच ओभर जे तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। ॿिन्ही अॻवाणनि जो खिते जी अमुन ऐं इस्तेकाम लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखण ते ज़ोर। शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान खिते में जंडदार अमुन जे क़याम लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखंदो।

रूसी सदर व्लादिमीर पुटिन ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते अॼु चीन पहुचंदो। रवानगीअ खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हाईंदे रूसी सदर जो चवणो त रूस ऐं चीन जा मज़बूत लाॻापा आलमी सतह ते इस्तेहकाम जी ताक़त बणिजी चुका आहिनि। मॉस्को ऐं बीजिंग जो मक़सदु कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ इतिहाद ठाहिण न पर आलमी अमन ऐं खु़शहाली जे लाइ गॾियल सहकार करणु आहे। रूस ऐं चीन गॾियल क़ौमनि शिंघाई तआवुन तंज़ीम जहिड़नि प्लेटफॉर्म्स तां गॾिजी आलमी इलाइक़ाई मसइला हल करण जे लाइ कमु करे रहिया आहिनि।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

ना कि हम जब कुछ हमारी पुरानी ऐसी चीजें होती हैं, पुरानी ऐसी ना हमारी कुछ आदतें होती हैं, जैसे अगर हम याद करते तो हमें हंसी आती है, या फिर अगर देखा जाए तो हमें ना पहले जैसे बहुत ज्यादा शौक हुआ करता था पिक्चर्स कलेक्ट करने का, या फिर हमें कोई भी ओकेजन हो, कोई भी मौका हो तो हम अपनी पिक्चर्स बहुत ज्यादा जो है ना वो खींच रहे होते थे. लेकिन आजकल देखा जाए तो जैसे क्रेज खत्म होता जा रहा है, वैसे हमें वो तमाम चीजें जो ना वो क्रिंज लग रही है. हम ये सोचते हैं कि अगर वो चीजें हम पहले ना करते तो कितना ना अच्छा होता. तो बिल्कुल आज आप मुझे ये बताएंगे कि क्या आपको अपनी पुरानी फोटोज देखकर हंसी आती है, या आपको लगता है कि ये क्या मैं क्रिंज चीजें कर रहा होता था अपनी लाइफ में, या अपनी लाइफ में कर रही होती थी. ये आज आप मुझे बताएं कि क्या आप अपनी पुरानी पिक्चर्स देखकर हंसते हैं अपने ऊपर या नहीं, या फिर आपको लगता है कि भाई जो हमने करा वो बिल्कुल सही करा था और हमें तो और भी ज्यादा फोटोज लेनी चाहिए थी. अक्सर जो है ना लोगों की माइंड सेट जो होता है ना वो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं. कुछ लोग अलग सोच के मालिक होते हैं, कुछ लोग अलग सोच रहे होते हैं. तो बिल्कुल वैसे ही आज आप मुझे बताइए जरा कि आप क्या अपनी पुरानी फोटोज देखकर हंसते ही अपने ऊपर या फिर नहीं. और साथ साथ अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो आप क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जिए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है. और अगर आप जिए लाड़काना FM 88.8 सर्च करते तो आपको इजिली हमारा पेज मिल जाता है. वहां पर अगर आप आते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जैसे आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर कर देते हैं. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, और साथ साथ बताइए कि हाँ जी भाईजान आप भी हमारे साथ मौजूद हैं. और उसके साथ साथ अगर आप हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हैं तो ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें होती है जो कि आप हमारे शो से कर रहे होते हैं. ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रोडक्ट अगर आपको बताए जाए तो प्रोडक्ट हमारे पास बहुत ही ज्यादा मजेदार है. जिन प्रोडक्ट में आप लोगों की खूबसूरती का जिक्र होता है, और आप लोगों की खूबसूरती के जिक्र के साथ साथ ना ऐसा है कि ये भाई प्रोडक्ट इतने जबरदस्त तरीके से तैयार किए गए हैं कि ना सिर्फ आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएंगे बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करेंगे. तो अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो उनके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा कौन से प्रोडक्ट आप क्यों लगाएंगे. अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट है और आप क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं. सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हैं या नहीं. तो अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं अवेलेबल तो उसके लिए आपको नंबर बताया जा रहा है जिसके ऊपर आप रابطہ करें, और नंबर के ऊपर रابطہ करने के बाद उन्हें बताइए कि भाई आप अवेलेबल कराना चाहते हैं अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अपने गोठ में, अपने शहर में, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आप भी परचेज कर सकें आराम से. तो नंबर है 03-15-799-0595. ये नंबर जल्दी से डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में भी अवेलेबल हो जाए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट. ओके जनाब, तो जल्दी जल्दी से इतने आप कमेंट्स कर देते हैं कि भाई जो पहले वाले कमेंट्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं. तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से आपके कमेंट्स पढ़ लूँ. और हिदायतुल्ला अहमदानी हमें सुन रहे हैं और आपने गाना लिखा है शायद, चले मैं कोशिश करती हूँ ये वाला गाना लगाएंगे. अली अकबर ब्रोही भाई हमें सुन रहे हैं और आपने गाना लिखा है मुमताज मौलाई की आवाज़ में. मैं बिल्कुल मुमताज मौलाई की आवाज़ में आपको गाना सुनाऊंगी. आदिल हुसैन, आप ये जो कमेंट है ना, ये लिंक वाला, ये जरा दोबारा से मुझे शेयर कीजिएगा क्योंकि वो ऊपर चला गया और मैं समझ नहीं पाई कि आपने गाना कौन सा बोला है. उसके अलावा हिंदी चाचा खालिद जूनी जो हमारे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम. जहीर अब्बास परवो हमारे साथ, गुड आफ्टरनून जी, आपको भी वेलकम हो गया. और तव्हां गानो चयो आहे, बिल्कुल हलाईंदासीं तव्हां जो गानो, तव्हां पंहिंजे भाइरनि खे सलाम ॾिना आहिनि. और सईदा बुखारी हमारे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम. मोहतरम जनाब, क्या हाल है आपके? मोहतरमा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप कैसी. और आपने दुआ दी है, बहुत शुक्रिया. और वेलकम करते हैं आपको. सनावला बिरोही हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम सनावला बिरोही भाई जान. और स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा खुशाई तबियत मूड माहौल माणू. तो हाँ, सब खुश आई जी जी, माँ परिवार सब खुश आयन, तां बुधाए तां ने सब खैर खुश. और हिदायतुल्ला कहते हैं कि कौन कहता है कि मौत आए तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा. जिंदगी रोज जलाता हूँ शम्मा की मानद, बुझ तो जाऊंगा मगर सवेरा तो कर जाऊंगा. हाओ हाओ खबर. अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद है सकरंड से, वेलकम जी. हजार खान जतोई भाई हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम हजार भाई, छाला ताने खुश आयो, प्रोग्राम तांके वणे पयो सो मोहब्बतूं तवां जो.
अच्छा किशोर भाई कहते हैं वीडियो पुश कर लाइव स्ट्रीमिंग में मसलो आ कलक हां अलाई छो मुखे लगे पे अजु सही से मुंह थले पई लाइव चलो ता बुधाई छियो दिसु ता को मता मसलो हो जे और ये है जी उदास लड़की हमारी ओपी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम ओपी हालत आने खुश आयो और चाचा खाली जुड़े जो कहती हैं आपकी हालात कैसी है कल तो आप जी आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ मजे में हूँ और सईदा बुखारी आप हमें लाड़काना से सुन रही हैं बहुत शुक्रिया जी लाड़काना में आपको रेशम

0: से इजीली जो है ना वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, तो आप जाइएगा, मालूमात लीजिएगा कहाँ कहाँ पर आपको मिल रहे हैं। और उसके अलावा निदड़ी कहती है कि तबीयत ठीक नहीं थी तो आज नाती नहीं, नहीं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद है, वेलकम टू यू मोहम्मद जमान, कैसे हैं? हजार भाई कहते हैं हम भी आपके साथ साथ है। ओके माँ भी तहाँ सा गड़गड़ाया वाला। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी नोरी। अच्छा नोरी आपका बिल्कुल कॉमेंट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम हुआ चाहता है कि जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जनाब व्हाइट एज एंड दी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरत होते जाइए।
1: It's 1:30 PM.
2: This program is brought to you by
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर और सूमर से सुबह 10 AM to 5 PM तई मरीजन जो इलाज कंदा हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कर याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन औरतुन में वजन जो न वधन उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 03-01-2196-851।
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
5: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0383-5769-0300-33-8556-9।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
9: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 8:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास. आप सुन रहे हैं GFM 88.8 पर. हाँ जी, हमारे साथ मौजूद है सखर मोरो, मीरपुर खास मटियारी, सेक्रेट मेहरा, पुरमातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. तो बिल्कुल भाईजान, अगर आप जानना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप लोगों को हम बताते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने वाले हैं. अगर आप ये सोच रहे हैं कि गर्मियन जो मौसम आए, गर्मियन में केयर क्रीम लगाएंगा, बाबा तां लगाएंगा, ऐसा लगाएंगा, सब लगाएंगा, बुधाइंदा नैन हुआ एकड़ी अलग आला. अच्छा, यह हकीकत है. गर्मियन के मौसम में अक्सर माण्हू चवंदा आहिनि त बाबा असां क्रीम नायूं लॻाईंदा, पर हू लॻाईंदा आहिनि, लॻाईंदा आहिनि ऐं लॻाईंदा कयो, पर उहे प्रोडक्ट लॻाईंदा कयो जेके तव्हांजी स्किन मुताबिक़ हुजनि, जेके गर्मियुनि जा प्रोडक्ट हुजनि, सम्झो था. ओके, सो अगरि तव्हां बि गर्मियुनि में कोई सुठो प्रोडक्ट चाहियो था त तव्हां वटि हुजे, तव्हां वटि नाहे कोई बि ऑप्शन, तव्हां वटि इलाही सारा, लेकिन तव्हांखे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे त असांखे छा करिणो आहे, त तव्हांखे व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु करिणो आहे. व्हाइट एज जा ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि जेके तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ आहिनि. ऐं व्हाइट एज जा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अगरि असां ज़िक्र कयूं व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो, त व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जेका आहे नाइट क्रीम आहे, राति जे टाइम तव्हां लॻाईंदा. एवोकाडो एलोवेरा से तयारु थियल आहे, खीर बि शामिल अथसि जनाब हिन जे अंदरि तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाइण जे लाइ. उनखां ॿी मज़े जी ॻाल्हि त अगरि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻायो पिया त तव्हांजी स्किन जेका आहे न उहा हमेशह फ्रेश रखंदी, ऐं तव्हांजी स्किन जेका यंग रहंदी, ऐं तव्हांजी स्किन में जेके बि अहिड़ा मसला आहिनि जेके तव्हां चाहियो था बाबा इहे त न हुजनि, इहे त न खपनि असांखे, त उहे सभु ख़तम थी वेंदा. सो तव्हां लॻाए सघो था व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम राति जे टाइम. ऐं हुन खां अलावा जेको आहे न, अगरि तव्हां कोई सुठो साबुण वठणु चाहियो था, साबुण तव्हां वटि कोई सुठो नाहे, या फिर तव्हां फेस वॉश इस्तेमालु कंदा, तव्हां वटि सुठो फेस वॉश नाहे, ऑप्शन नाहे, ऑप्शन तव्हां वटि खोड़ा आहिनि पर तव्हांखे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे, त तव्हांजे लाइ व्हाइट एज जो फेस वॉश बि मौजूदु अथव ऐं व्हाइट एज जो साबुण बि मौजूदु अथव. इहे ॿई चीज़ूं आहिनि. हाणे तव्हांखे बिल्कुल बि तव्हां इहो न चवंदा, मां बिल्कुल बि न ॿुधणु चाहियां थी, त तव्हां चओ त भाउजी असां त साबुण हणंदा आहियूं, भाउजी असां त फेस वॉश हणंदा आहियूं. तव्हांजे लाइ ॿई चीज़ूं आहिनि, तव्हांखे जेको वणे उहो तव्हां लॻायो, जेको तव्हां लॻाईंदा उहो तव्हांखे लॻाइणो पवंदो, सही आहे. लेकिन हा, व्हाइट एज जो ऐं व्हाइट एज जा प्रोडक्ट जेके आहिनि तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए छॾिया आहिनि. अगरि न बि मिलनि था, किथे नथा मिलनि, तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा वञो था, जीअं असां चऊं बाबा अॻिते ॻाल्हि पहुचायूं, अॻिते उहे सम्झनि ॻाल्हि खे त बाबा किथे किथे नथा मिलनि हीउ प्रोडक्ट, ऐं हू अवेलेबल कराए छॾे. उन खां अलावा ॿियो हिकिड़ो प्रोडक्ट असां वटि मौजूदु आहे, जंहिंजो नालो आहे व्हाइट एज जी लवली क्रीम. अगरि व्हाइट एज जी लवली क्रीम तव्हां न लॻाई आहे न, सम्झो तव्हां कुझु बि न कयो आहे ज़िंदगी जे अंदरि, छो त व्हाइट एज जी जेका लवली क्रीम आहे न, रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन सां तयारु थियल आहे, जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन जा कैप्सूल शामिलु अथव, सम्झो था, 30 वाइटमिन जा कैप्सूल. ऐं उन में जेको आहे न, तमामु वाइटमिन मौजूदु आहिनि, ऐं हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि शामिलु आहे, जेका तव्हांजी स्किन जी जेको आहे न, प्रोटेक्शन कंदी आहे. उस समय अगरि तव्हां निकिरो था, तव्हांजो कोई बि अहिड़ो कमु आहे, या हिन में इहो आहे त एज लिमिट्स बि न आहिनि, तव्हां अगरि कहिड़ी बि एज में लॻाए सघो था. हीअ फेयरनेस क्रीम आहे, ईज़ीली तव्हां केरी करे सघो था, पाण सां गॾु मेकअप नथा यूस करे सघो, त व्हाइट एज जी लवली क्रीम लॻाए वठो. बाबा वाह, जो प्रोडक्ट तयारु कयो अथऊं व्हाइट एज वारनि. ऐं तव्हां हर कोई घर में हर भाती लॻाए सघे थो, नंढा आहियो, वॾा आहियो, पुराणा आहियो, जवान आहियो, सभु लॻायो, सही आहे, जे सभु सुहिणा थी वञनि ऐं तव्हांजी स्किन सफ़ा ई असली चमकंदी वधंदी. हिन जे अंदरि न नंढा नंढा नंढा नंढा सफ़ा नंढा नंढा छा हिन खे छा चइबो आहे, ग्लिटर टाइप मौजूदु आहिनि, जेको अगरि तव्हां लॻाए त तव्हांजो फेस जेको आहे न, शाइन बि कंदो आहे. सो तव्हांखे ख़ूबसूरती मिलंदी, तव्हांजी स्किन में ग्लो ईंदो, तव्हांजो फेस शाइन कंदो, ऐं तव्हांखे उस खां जेको आहे न, प्रोटेक्शन बि मिली वेंदी, सम्झो था, एॾा सारा फ़ाइदा. सिर्फ़ु हिकिड़ी प्रोडक्ट जंहिंजो नालो आहे व्हाइट एज जी लवली क्रीम. सो व्हाइट एज जी लवली क्रीम तव्हां सभु लॻायो, मर्द मायूं सभु हणंदियूं, बाबा सभु हणो, बसि सभु हणो. पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर तां वञो ऐं मालूमात वठो, किथे मिले थो, किथे नथो मिले, जीअं असां अवेलेबल कराए सघूं, सही आहे. अगरि अवेलेबल आहे त पोइ तव्हां वञी वठी अचो, ऐं सफ़ा मुनासिब क़ीमत में आहे, तव्हां मतिलबु अफोर्ड करे सघो था, एतिरनि पैसनि में तव्हांखे मिली वेंदो. उन खां अलावा अगरि जेके माण्हू एकनी खां परेशान आहिनि, दाणा आहिनि तव्हां खोड़ सारा, दाणनि खे ख़तम करण चाहियो था, त तव्हांजे लाइ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आहे. बिल्कुल जी, डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्नी जेको ट्यूब आहे न, ही तव्हांजे दाणनि खे ख़तम करे छॾींदो. आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे जनाब, तव्हांजी स्किन में दाणा आहिनि या फिर तव्हांजे एक्नी जो क़िस्म तव्हांखे सम्झ में नथो अचे, त हर स्किन जी प्रॉब्लम्स जे लाइ आहे जनाब डॉक्टर पिंपल ट्यूब. ही तव्हां हर स्किन ते लॻाए सघो था, हर स्किन वारा इस्तेमालु कनि माण्हू, ऐं इस्तेमालु करण खां पोइ तव्हांजे चहिरे जा एक्नी ख़तम थी वेंदा, एक्नी जा निशान ख़तम थी वेंदा. तव्हांजी स्किन ते अगरि कोई ॿियो निशान आहे, जीअं तव्हांखे धक लॻी वियो आहे, तव्हांखे कट अची वियो आहे, अहिड़े क़िस्म जा निशान बि अगरि तव्हांजे चहिरे ते मौजूदु आहिनि, त उहे बि ख़तम थी वेंदा, सही आहे, सम्झो था. सो लॻायो.
डॉक्टर पिंपल नाले सां ही ट्यूब अथव, ही बि वाइट एश वारनि जो ट्यूब आहे, ठीकु आहे। लेकिन वाइट एश जो बि तव्हां नालो खणो त भले खणो, पर डॉक्टर पिंपल नाले सां न ही जेको ट्यूब आहे ही फेमस अथव। सो डॉक्टर पिंपल नाले सां ट्यूब आहे एंटी एक्नी जो ट्यूब आहे, सफ़ा ईअं वी आई पी नंढड़ो नंढो ट्यूब आहे ऐं अफोर्डेबल प्राइस में तव्हांखे मिली वेंदो। तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर तां वञो, हुतां मालूम कयो ऐं मिले थो त वठी अचो, सही आहे। जंहिंखे बि एक्नी आहे न उन्हनि खे गिफ्ट कयो या पाण लॻायो, तव्हांजी मर्ज़ी आहे बाबा, जीअं वणेव कयो पर वठो, सही सही आहे। ऐं तव्हांजे एरिया में अवेलेबल नाहे त पोइ तव्हां डायल कंदा 0315-799-0595। ही नंबर डायल कयो, पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो ऐं बाबा फ़ाइदो हासिल करियो वाइट ए जे प्रोडक्ट्स मां, सही आहे। तो वाइट ए जा प्रोडक्ट लॻायो ऐं सफ़ा वाइट वाइट थी वञो। उन सां गॾोगॾु गाना बि लिस्ट में मौजूद आहिनि। हा, मूं अॼु अव्हां खां सवाल पुछो आहे न, सवाल पुछो आहे त छा तव्हां पंहिंजी नंढपिण जा या फिर तव्हां पंहिंजा पुराणा फ़ोटोज़ ॾिसी करे पाण ते तव्हांखे खिल ईंदी आहे, क्रिंज महसूसु थींदो अथव त असां नंढपिण में या पुराणा फ़ोटो असांजा केॾा ईअं क्रिंज आहिनि, इहे ॾिसी करे पाण ते खिल ईंदी आहे, कावड़ ईंदी आहे, अॻे असां कहिड़ा कम कंदासीं। हाणे छो त ज़मानो थोरो चेंज थी वियो आहे न, ऐं हाणे असां सभु थोरा हू थी विया आहियूं, एस्थेटिक फ़ोटोज़ असांखे खपनि पंहिंजी गैलरी में। उन हिसाब सां ॾिठो वञे त जेके असांजा पुराणा फ़ोटोज़ आहिनि उहे ॾिसी असां थोरो चवंदा आहियूं त बाबा हीअ छा कंदासीं असां, ऐं असांखे थोरी खिल बि ईंदी आहे। सो तव्हांखे ईंदी आहे न, ॿुधायो मूंखे फेवरेट गानो हलायो अथऊं पंहिंजो, सो ॿुधंदासीं उन्हनि माण्हुनि सभिनी खे डेडिकेट चङे सुठो लॻंदो।

अॼु मूं ट्राए कई, कोशिशि कई त प्रोडक्ट जे बारे में तव्हांखे ॿुधायां, त थोरो अलॻि ॿुधायो, अलॻि तरीक़े सां. रोज़ तव्हांखे उर्दू में ॿुधाईंदी आहियां, सो अॼु मूं सिंधी में ॿुधाए छॾियो, सम्झो था. जीअं सभिनी खे ॻाल्हि सम्झ में अचे, उन्हनि माण्हुनि खे जेके सिंधी सम्झंदा आहिनि, सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि, असांजा सुहिणा सिंधी आहे. हा बाबा, वाइट एश ब्यूटी क्रीम जेका आहे न, हुनजे अंदरि एवोकाडो आहे, एलोवेरा ऐं खीर बि अथसि. इहे टई चीज़ूं अथसि, टई चीज़ूं मिली करे तव्हांजे लाइ वाइट एश जी क्रीम ठही अथव. सो लॻाइजो, सही आहे.

love this song. ओके जी, बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद हैं और ये दर्दे दिल कहती हैं कि सिद्रा मीरपुर खास में वाइट एश नहीं मिल रही. बिल्कुल ये बात मैंने आपकी कल बोली थी भर इरफान सियाल साहब को, उन्होंने कहा था कि जल्दी हम मीरपुर खास में अवेलेबल करा देंगे. जहां जहां पर अवेलेबल नहीं है तो आप बता दिया करें ताकि हम आपके एरिया में अवेलेबल करा दें, क्योंकि हमें आप लोगों से मोहब्बत है. हम चाहते हैं कि आप सारे लोग खूबसूरत हो जाए, ठीक है. और ये हमारे साथ हमारी नोरी मौजूद है. हेलो हाय प्यारी सिद्रा, कैसी हो? शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत सालों के बाद शो सुन रही हूँ. आपका आवाज बहुत अच्छी है. मैं नोरी कराची से सलाम सबको. वालेकुम अस्सलाम जानू.

वैसे ये गाना वैसे ही लगाया है मैंने. आई ना समझो कि कोई रूठा है सुधरा से. अरे ना भाई, अपने फेवरेट गाने सुनने के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि भाई अगर ये वाला मोमेंट हो जाए तब हम अपने नको, बिल्कुल नहीं. और कि पता नहीं क्या हुआ है जी, ये मुझे भी समझ नहीं आई इस व्हाट्सएप वाले कमेंट किया. और किशोर भाई कहते कल मारने जा कॉमेंट इसी खबर में. वाकई बाबा मानन के मुझे परवाह थव ये समझो तब अच्छा ले आसा जी. हजार खान भाई कहते वेलकम टू शो, लाजवाब है आपका व्हाइट एश ब्यूरी क्रीम एंड इन प्रोग्राम गुड आहे हाउ दाई बुदा. कहते अदी हम एसी और नींद छोड़कर आपका शो एंजॉय कर रहे हैं, मजो इन द वाला निंद्रा करे चाह कंदो.

नोविटी प्रोग्राम व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से लगा दी जाइए खूबसूरत होती जाइए। अच्छा निदा कहती है कि कसम से मेरे साथ सुबह ही ये सीन हुआ था, मैं अपनी ओल्ड पिक्स वीडियोस देख रही थी और सोच रही थी वक्त के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, पहले कैसे थे और अब देखो कैसे हैं। तो ऐसा ही है भाई, ये बात जो है ना मैंने मतलब देख कर और समझ कर ये टॉपिक आप लोगों से पूछा क्योंकि ये ऐसा हुआ है मेरे साथ। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं मुझे तो अपनी पुरानी तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं, लुकिंग क्यूट यंग एंड स्मार्ट। योर टॉपिक आंसर कहो तो नहीं नहीं, नहीं।

मेरा साबुन को ज्यादा ही फास्ट है. अरे जहीर अब्बास भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में प्रोग्राम सुन रहे हैं. और मुझे बताएं वाइट एश के प्रोडक्ट्स आप कब इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट लगाएंगे ये भी बताइए जरा. और ये अली अकबर ब्रोही भाई हमें सुन रहे हैं. हेलो, कैसे हैं? ठीक ठाक है.

0: किशोर भाई कहते टॉपिक अदी, मैं सच में क्या बताऊं आपको, मेरी पिक्स तो पूरा घर देकर मुझे तंग करते हैं और मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं। सही और हजार खान भाई तव्हां खे शो वणे थो मोहबतूं मोहबतूं। लाड़काने वारा माण्हू वाकई सोड़ा हूंदा आहिनि, छो त लाड़काने में वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलनि था, तव्हांजे बि एरिया में मिलंदा जॾहिं तव्हां थोरो हथ पेर हणंदा ऐं तव्हां नंबर ते राबितो करे हुननि खे ॿुधाईंदा त बाबा तव्हां बि अवेलेबल कराइण चाहियो था पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते, जे तव्हां बि लाड़काने वारनि जीअं सुहिणा थी वञो। सो नंबर अथव 03-15-799-0595 नंबर ते राबितो कयो। सही आहे कहिड़े गाने कट ते ॿुधायो
1: बहाना कंदो।
0: अच्छा एसन अरबाणीअ में सुन रखे खे वालेकुम अस्सलाम एसन, क्या हाल है, ठीक ठाक है? अरे बाबा 10 रुपया गुम थियण ते माण्हू उदास थींदो आहे, छा 10 रुपया त अॼुकल्ह ॿार बि नथा वठनि, महांगाई पेतरी थी वई। अच्छा मुंहिंजी भाणी जी आहे न नंढड़ी, उहा 10 रुपए खे डी कोठींदी आहे, डी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां मूंखे यादि आयो, उहा नंढड़ी आहे सफ़ा नंढड़ी चवंदी आहे मूंखे डी ॾियो, माना उहा 10 रुपया वठंदी आहे, सम्झो था, जेके थोरा हुन खां वॾा आहिनि उहे 10 रुपया बि न आहिनि वठंदा, 50 बि नथा वठनि।

0: आहे बाबा ठहंदो आहे
1: पीचलंदो आहे ॻाल्हाइण ते पीचलंदो आहे
0: साईं वाह जो गानो हलायो अथम वासा भाई हमारे साथ मौजूद है वासा भाई हेलो कैसे हैं ठीक ठाक है मजे में प्रोग्राम सुन रहे हैं आपको वेलकम कहा जाता है और ये जी हमारे साथ हैं हालार अहमद भाई आपको भी वेलकम करते
1: हैं
0: दर्द दिल आपको भी वेलकम करते हैं मेरी प्यारी जान

राजा वैसे बहुत ही प्यारा गाना है, ये जिस गाने के ऊपर बना हुआ ना वो गाना मेरा बड़ा फेवरेट था किसी टाइम में। हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार करे सो प्यार करे, जो नफरत की सो नफरत की। ॾाढो वीआईपी गानो आहे। उन गाने जी कट ते पर मूंखे हिनमहिल ताईं कंहिं कोन ॿुधायो, लॻे थो तव्हां खे जेकॾहिं गाननि जी कट करण न थी। प्रोग्राम में तव्हां 80 सेकंड मौजूदु रहंदा पूरी पूरी 3 बजे ताईं। टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक वठंदासीं, या उन खां पोइ जल्दी वापसी तव्हांजी मोटींदासीं। तव्हां कॾहिं न वञो, हिते वेठा हुजो। मां ओ हीअं मोटा वठी, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो सुनते रहिए और ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहिए। सही है, मां मोटी अचां थी।

0: ख़ुसूसी रियायत हूँ अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज़ जैपनीज़ टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज़ जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ
2: 0302018003।
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
3: न? अदा
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
3: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: हा बाबा सभु लॻाईंदा सभिनी खे ॿुधायां थी त तव्हां सभिनी जे लाइ अथव. ऐं अच्छा हा तव्हां छा था चओ? अच्छा वरियाम अली जतोई हमारे साथ मौजूद है. वरियाम आपको वेलकम हो गया. अच्छा हज़ार भाई कहते हैं सही आदि सिंधी में ॿुधायो असां जहिड़नि खे सम्झ में ईंदो. हाज़िर
1: हाज़िर.
0: अच्छा निदड़ी कहती है कि कोई रूठ भी जाए तो मनाती नहीं शीज़ा, बस अलग ही बंदी है ये. हाओ लॻंदो ईअं आहे वाकई. मां हिन प्लेनेट जी न आहियां, ईअं लॻंदो आहे.

हमारे साथ आरजे बालाज मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। सिद्धराज जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? वैसे बड़े दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में आए हैं, कहाँ गुम थे? अच्छा, स्मार्टू गोपांग हमारे साथ मौजूद है कंबर सिटी से, हमारे शो सुन रहे हैं। वेरी नाइस शो, थैंक

झुके ना, तो ये वाला गाना हम कल वाले प्रोग्राम में चलाएंगे, ठीक है? मतलब पक्का वाला गाना चलाऊंगी, यही वाला मुझे याद हूँ बस. अच्छा तुम्हें थोड़ो याद आ रहा है. हजारों गलत समझंदा आयो.

में जी बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आप शमन मिराले की आवाज में सुन रहे हैं। और ऐसन कहते हैं शमन जो गानो आहे, अच्छा शमन जो यो गानो ऐसन असा सुभाणे बुधंदा सा जो ही दिल टूट्स वारो गानो बुधो से। सनोला बिरोई हमारे साथ ये थी आपका प्रोग्राम में मोरो एफएम से सुनता हूँ, हमें बहुत पसंद है कि बलूचिस्तान से हूँ। सनोला बिरोही वेलकम करते हैं प्यारे भाई को। ओके जहाँ जहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल नहीं है तो भाईजान आपको मैं बताती हूँ, बहुत मर्तबा बताती हूँ कि इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कीजिए और बताइए कि आपके एरिया में नहीं मिल रही, ताकि तव्हां जे गोठ में, तव्हां जे सिटी में, तव्हां जे पाड़े में अवेलेबल कराई वञे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। जे तव्हां आराम सां वञी वठी अचो, परचेज कयो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि वठिणो आहे, समुझो था, ॿई चीज़ूं साथ में लॻायो जी सफ़ा साथ में सोणा थी वञो। नंबर आहे 03 15 799 05 95।

अच्छा पोस्ट के लाइक एंड शेयर के नालो ओके हमारे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम सर जानी क्या हाल है हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ साथ हूँ आज मेरी पसंद का गाना प्ले करना मेरी पसंदीदा सिंगर का गाना आप तो जानती हैं ना हाँ जी बिल्कुल जानती हूँ ये नहीं अपना गाना सुने जरा कहती हैं बिल्कुल सिडो मुझे अपनी पुरानी पिक्स पर हंसी आती है कि मैं कांटे ज्यादा लगाती थी कांटे ज्यादा लगाती थी इस बात पर हंसी आती है चलिए हमारी प्यारी लुबी हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया ओके जी फजीला सिंधी भी हमें सुन रही है फजीला सिंधी क्या कह रही है वालेकुम अस्सलाम और हैप्पी ट्यूसडे आफ्टरनून और आपने सब सुनने वाली लड़कियों को सलाम दिए हैं और अपनी प्यारी अम्मी जान को भी सलाम दिए हैं बहुत शुक्रिया जी और कायनात को भी सलाम दिए हैं इरम हमें सुन रही है इरम आपको वेलकम करते हैं प्यारी सी लड़की और ये हमारे साथ हैं कहते फरमाइश वाला गाना नथा हलायो बाजी तवां मुझे फरमाइश हलायो कावड़ आशा मुनवर मोलाई जो गानो हुयो मरा त कंहिंजे लाइ मरा इहो गानो बा मां कोशिश कंदमि हलाईंदमि सया और ये हमारे साथ हैं कश्यप कहती हैं दिलबर जानी आप कैसी हैं गुड आफ्टरनून हम भी अच गए आपके लाजवाब शो में सॉन्ग सुनवाना तुम मिले जब से फील हुआ तब से ओके और दादू खां इमदाद जतोई अब्दुल खालिक जतोई हैं मुबशर हुसैन जतोई किफायतुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद है लगता है भाई आपका मैसेज मिसिंग पार्ट हो चुका है सो आप सब भाइयों को वेलकम करते हैं प्रिंस अहमद अली रिंद हैं फ्रॉम अहमद अब्बास वालेकुम अस्सलाम कहते हैं गाना ओके जी गाना सुनाएंगे और लिखा है कि जी बिल्कुल छोटे हैं और हंसी आती है हाँ इस बात पर हंसी आती है कि हम छोटे थे इरम कहती है आप ही माँ ठीक आया मीरपुर खासी अब्दुल्ला बहर है वालेकुम अस्सलाम कहते बाजी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम की रिजल्ट जबरदस्त है प्लीज आज कोई भी शमन का गाना लगाएगा बिल्कुल जी शमन का गाना आपने सुना होगा मेरे प्यारे भाई और गोट मोहम्मद तैयब थेबू को हबीबुल्ला थेबू है ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का गाना लगाइए ओके ओके जी लगाते हैं गोट मोहम्मद तैयब थेबू खां हबीबुल्ला भाई तव चयो तुम्हारा शो ढो भलो है तुम दियो हाल अहिवाल जी प्रोडक्ट बुधाया थी लगाया है कौन लगाया है अगर लगाया अव तो बुधायो बाबा किथे पहुंचायो गाल किथे पहुंची जी असा अगते जो है तो समझी सकूं तो कड़ा कड़ा असाजा लिसनर आन जी ही प्रोडक्ट लगान पाया जे मैं तक बुधाया पी तो वाइट एज जहा प्रोडक्ट उनका अलावा डी स्किन जहा प्रोडक्ट आज तेजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करा वनो उतना वही परचेज कर अचो लगायो कोई सुना सुना थी वो टाइम तो है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वो वापसी जल्दी मोटी तेजी तेरे न वनो इतने वेठा हो मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय White Age Beauty Products and Skin Beauty Products.

0: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385 569 0385 69।
1: नाज़रीन मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहराबपुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई सोम

हाँ भाई ये फीलिंग तब की है। वापस आ चुके हैं दोबारा आप लोगों के पास और प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके जनाब, सो आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदी कहा जाता है। आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि क्या आप अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर हंसते हैं, क्या आपको खुद पर हंसी आती है, बताएं जरा। और इसके साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं भाई, आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, आपकी इतनी सारी बातें, इतने प्यार भरे फीडबैक्स हैं। जल्दी से इसी बात पर पोस्ट को लाइक और शेयर कर दीजिए और दोस्तों को भी मेंशन कर दिया करें ताकि वो भी जान सके कि भाई जान खूबसूरतियां इस प्रोग्राम में आप लोगों को मिल रही हैं। वो ऐसे क्योंकि आप अपने करीबी जर्नलिस्ट पर जाते हैं, वहां से जाकर आप जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करके आते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताते हैं। हाँ जी, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स शामिल हैं और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन से। और एक को बताऊं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2 रातों में आप लोगों को रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप 2 रातें इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं ताकि आप भी खूबसूरत हो जाएं। लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं। तो लगाइए जी नाइट क्रीम है, रात के टाइम लगाकर सो जाइए और साथ में डी स्किन का फेस वॉश लाजमी यूज कीजिएगा। और फेस वॉश आप 2 से 3 मरतबा जो है ना वो लगाइएगा, यानी कि सुबह को लगाइए, दोपहर को लगाइए और रात को लगाइए। यस भाईजान, ये पाकिस्तानी मूवी का गाना है तो पाकिस्तानी गाना हुआ। ओकरी चाचा खालिद कहते हैं मैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम और फेस वॉश लगाकर खूबसूरत हो गया हूँ। क्या बात है जी, ऐसे ही चाचा लगाते रहिए और माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी जवानी तो बहुत ही अच्छी थी। वैसे वो जो ओल्ड वाला जमाना होता था तब फैशन कैसा होता था और लोग हेयर स्टाइल कैसे बनाते थे, उनका जो लाइफ स्टाइल था वो आज के टाइम से देखा जाए तो मुख्तलिफ था। और सच्ची बताऊँ तो मुझे वो जो ओल्ड वाला टाइम था ना वो बड़ा अच्छा लगता है। टेक्नोलॉजी इतनी खास पसंद नहीं आती, तो पता नहीं ये क्या लॉजिक है कि मुझे ऐसा लगता है कि माँ काश पुराने दौरे में पैदा।

भाई, तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी महसूस हो जाएगा कि आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाएं। शहबाज हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आरजी बलाज कहते मैं भी लगाया, बिल्कुल तमाम भी लगायो बाबा, पाड़ी वारन के, मिटन माइटन के, दोस्तन के, सबनी के बुधायो, घर वारन के बुधायो, तो हूँ भी लगाए डी स्किन ब्यूटी क्रीम जैसा सोना थी वन।

अच्छा, ये जो मुझे लोग कह रहे ना कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हमारे एरिया में नहीं मिल रही है, असांजे ॻोठ में नाहे, सिटी में नाहे, त तव्हां सभु कन खोले ॿुधो, हिकिड़ो नंबर तव्हांखे ॿुधाए, नंबर ते तव्हां राबितो कयो, सही आहे, कॉल कयो या फिर मैसेज कयो, उन्हनि खे ॿुधायो त तव्हां किथां खां असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो ऐं किथां खां जेको आहे न तव्हां प्रोग्राम ॿुधी करे चाहियो था त बाबा असांजे बि क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल हुजनि, त तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595 03-15-799-0595 ही नंबर डायल कयो जे तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि अवेलेबल थी वञे ऐं वाइट एज जा प्रोडक्ट बि अवेलेबल थी वञनि, सभु मिलनि बाबा, सभु वठो। और ये अनवर भाई हमें सुन रहे हैं, अनवर भाई वेलकम करते हैं आपको, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ। और हिदायतुल्ला क्या कहते हैं?

अच्छा तारिक खान हमें सुन रहे हैं, तारिक आपको वेलकम करते हैं. और हैं जी आदिल हुसैन कहते वाओ नाइस सॉन्ग थैंक यू. जहीर अब्बास हमें सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया भाई. मुमताज सुलेख का गाना आपने सुना होगा, आपने प्रोग्राम में लगा लिया है. और हैं जी दर्दी दिल कहती हैं कि टॉपिक मुझे बहुत हंसी आती है अपनी पुरानी फोटोज देखकर, सबसे ज्यादा अपने बालों पर हंसी आती है. क्यों ऐसा क्या था बालों में? और उन्होंने खाला वही गानों लगाए हो तुम

वाह साईं वाह, वाह साईं वाह। छा तव्हां उहे आहियो जेके मोहबत खां डरजंदा आहियो? अगर यहाँ तो बाबा टो और आदिल कहते हैं चापे गंज से सिदरा में अपने बचपन की पिक होता हूँ। खुश थी वाह वाह वाह वाह वा, या तो भली गाल आए। और न खा अलावा असम वे मौजूद है जी इरम जो मैसेज है। इरम हाँ बिल्कुल तुम सही था चो। अच्छा चाचा खालिद बिल्कुल तुम जो ही गानो है, एंजॉय यो गानो। ऐं चओ था मूंखे अवांजो हिकु ॾुखु आहे पर ॿुधाईंदसि न। इहो वरी कहिड़ो ॾुखु आहे जेको मुंहिंजो तव्हांखे लॻी वियो? अलाह पना ॾियो। और ॻोठ हाजी गुलाम ख़ासि केली लॻ झंडो मरी खां कुर्बानी अली ख़ासि केली बाची झंडो मरी झंडो मरी में क्रीम मिल रही है। हमने फैमिली ने सबने इस्तेमाल करी है, रिजल्ट VIP मिला है। चलें क्या बात है, जबरदस्त हो गया जी ये तो। और ऐसे ही बता दिया करें जहां जहां पर अवेलेबल हो चुके हैं। और हबीबुल्ला थे वो कहते वाइट एज लवली क्रीम आओ इस्तेमाल कया पयो बेस्ट आए, बाकी साबुन इस्तेमाल कोन कयो आए। साबुन भी कयो बाबा इस्तेमाल जे ताके ना भल्ला सफा VIP रिजल्ट मिले। इरम कहती है माय डियर दिलबर गाना गाना तां जपो कडी बुद्धि वटनासी मां तां सुले हली वयो ना प्रोग्राम में।

अच्छा इमरान अली बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम के दी छालन कुशायो अस्सलाम वालेकुम बाजी दुआ आहे तवा हमेशा मुस्कुराईंदा रहो असा भली रोंदा रहो लाडकाने का इमरान अली बिरोही ता छोरो बा ता में खिलंदा रहो असा जिया विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो भाई रऊफ मक्सी का गाना सुनाए सुभणे अज जो टाइम खत्म थी वयो आहे थोड़ो टाइम बचो ओ हे तरड़ो

अच्छा चाचा बिल्कुल इहा ॻाल्हि मूंखे ख़बर हुई, पर इहो बाद असां मतिलबु ॾिसो न हिकिड़ो ही माहौल आहे असांजो, असां हिते एंटरटेनमेंट कयूं था, असां गाना हलायूं था, खिल भोग मज़ाक आहे, भई अहिड़े क़िस्म जो कोई बि टॉपिक अची वेंदो त पोइ मां सोचींदी आहियां त छा अहिड़े माहौल में उन अहिड़ियुनि चीज़ुनि जो ज़िक्र करणु मतिलबु मुनासिबु लॻे थो। सो इन्हनि चीज़नि जे करे बसि मूं शायदि इन चीज़ खे थोरो आनियर न कयो, बाक़ी जेको अफ़सोस आहे उहो बिल्कुलु आहे ऐं अलाह साईं तव्हांखे सबर ॾे। बाक़ी थोरो तव्हां बि महसूसु कंदा कनि सभिनि ॻाल्हियुनि खे, त असांजो हिकिड़ो माहौल आहे प्रोग्राम जो, त उन हिसाब सां थोरो मां सोचींदी आहियां त इहे सभु चीज़ूं जेके न त थोरियूं इंसान खे ख़्यालु करणु घुरिजे। मूं अगरि पर्सनली ॾिठो आहे या ॿुधो आहे, अगरि मां किथे अहिड़ी शइ ॾिसी वठंदी आहियां ॿुधी वठंदी आहियां त मूंखे पाण खे सुठो न लॻंदो, त मां इहो सोचींदी आहियां त अगरि मां इहो सभु कयां त पोइ ॿुधंदड़नि खे छा सुठो न लॻंदो, सम्झो था।

ॾिस प्रोग्राम आहे वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो जंहिंमें तव्हां ख़ूबसूरती जा राज ॿुधंदा आहियो ऐं वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि जेके तव्हांजे लाइ असां हर जॻह अवेलेबल कराइनि हुन में तव्हांखे साबुण मिले थो फेस वॉश मिले थो ब्यूटी क्रीम मिले थी वाइट एश जी लवली क्रीम आहे जेका तव्हां इज़िली वठी इस्तेमालु करे सघो था फेयरनेस क्रीम आहे अगरि तव्हां काॾे बि वञो था यानि की तव्हां ऑफिस में कमु कयो था का जॉब कयो था स्कूल में पढ़ो था पढ़ायो था यूनिवर्सिटी में पढ़ो था पढ़ायो था त किथे बि अगरि तव्हां वञो था तव्हांजो डेली बेसिस ते कोई न कोई कमु आहे या फिर तव्हां कोई बि कमु कयो था त तव्हांजी ज़िंदगी में वाइट एश लवली क्रीम जो हुजणु ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे सो वाइट एश लवली क्रीम जेका तव्हांजे लाइ हिकिड़ी फेयरनेस ट्रीटमेंट जो कमु कंदी आहे ऐं हिन जे अंदरि 30 वाइटमिन्स कैप्सूल मौजूदु आहे तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदी तव्हांखे सुहिणो बणाईंदी ऐं तव्हां सभु सफ़ा वी आई पी थी वेंदा सो हीउ प्रोग्राम जो लास्ट ट्रेक लॻायो अथमि

अच्छा ये गाना मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, तो अगर ये गाना जब भी प्रोग्राम में चलता है तो मैं सोचती हूँ कि बस ये एंजॉय करें. हाँ ॾाढो सुठो वणो आहे वाला. अॼु खोड़ माण्हुनि जा कॉमेंट रहिजी विया हूंदा छो त अॼु वैसे ई कॉमेंट प्रोग्राम में इलाही सारा अची विया आहिनि. सो तव्हां सभिनी भाइरनि जूं भेनरुनि जूं सभिनी जूं मोहबतूं आहिनि बाबा ईअं प्रोग्राम में शामिलु थींदा कयो. अवां जूं मोहबतूं आहिनि, हुन खां अलावा तव्हां वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो जेको आहे न इस्तेमालु कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो, सभु प्रोडक्ट तव्हांजे ख़ूबसूरती खे वधाईंदा. ऐं हुन खां अलावा वरी इनशाला सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थियण वारी आहे 1:30 बजे ताईं तव्हांजो असांजो साथ रहण वारो आहे. सो पंहिंजो उहो हेॾो सॼो ख़्यालु रखंदा. किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां पई. सही आहे. सो मोकिलणी नाहे बाबू सां सलामत सां सलामत. अलाह हाफ़िज़. बाय. लव यू ऑल. एंड

0: It's 3 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: बलूचिस्तान में जटदार अमुन लाइ आवाम दोस्त पॉलिसी ऐं बहितर हुकमरानी अंतर आहे. पाकिस्तान जी तरक़ी रोकण जी कोशिश कंदड़ सदाई नाकाम थींदा. क्वेटा में फौजी अफसरनि खे ख़िताब कंदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त हथियारबंद फ़ौज हर क़िस्म जी दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे. पाक फ़ौज आवाम जी हिमायत सां दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे. पाकिस्तान जी तरक़ी खे प्रोपेगेंडा या परॾेही सरपरस्ती मशीन दहशतगर्दी ज़रिए रोके नथो सघिजे. जदीद जंगी तरीक़ेकार तेज़ीअ सां तब्दील थी रहियो आहे. फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी मल्टी डोमेन ऑपरेशन ऐं टिनी फ़ौजनि में गॾियल सहकार ते ज़ोर भरियो.

0: 28 तरमीम थींदी, निज़ाम तब्दील थींदो या वरी मार्च लाइ बि लॻी सघे थी। 28 आईनी तरमीम बाबति फ़ैसिलो पार्लियामेंट में वेठल माण्हुनि खे करणो आहे। असां पार्लियामेंट खां ॿाहिरि आहियूं। नौशरो फिरोज़ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर मुर्तज़ा जतोई चयो आहे अपोज़िशन सूरतहाल नज़र आहे, हिकमत अमली आहे। ज़ाहिर नथा करे सघूं सिंध खे माफ़िया खां आज़ाद करण वारो जदोजहद जारी रखंदुसि। मुर्तज़ा जतोई भाउ ख़िलाफ़ 8 केसनि जी ॿुधणी 11 जून ताईं मुलतवी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर

0: ऐं कालम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 0301-399-2836
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724।
1: सिंध के माथे का झूमर
6: DFM 88 नेटवर्क
7: सिंध की आवाज। मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 3:15 PM. This time check is brought to you by. It's 3:15 PM.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
3: गेट नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: टू जीरो सेवन

0: जो पढ़ते हैं ना उसको थोड़ा थोड़ा याद भी कर लिया करें और अच्छी बातें दूसरों को भी बताया करें, ठीक है। ये हाल है हमारे। अच्छा मतलब हमारे दिमागों में इतना कुछ ऐड हुआ हुआ है कि हमें अच्छी बातें याद नहीं रह रही है, हम भूल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम कहते हैं जनाब, कौन बात कर रहा है? आदा जोए, वेलकम कहते हैं आपको, क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से? फ्री टाइम में क्या करते हैं आप?
1: मैं फ्री टाइम में पढ़ाई करता हूँ।
0: अच्छा जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
1: ये पढ़ाई 8 क्लास।
0: अरे वाह, 8 क्लास के पेपर हो गए आपके?
1: हाँ हो गए।
0: चीटिंग तो नहीं की थी आपने पर्चों में?
1: नहीं नहीं, चीटिंग का सामान।
0: आपकी तालीम कम्प्लीट हो जाएंगे तो कौन से प्रोफेशन में जाएंगे आप?
1: मैं तो जाऊंगा बैंक का।
0: अरे वाह जबरदस्त, मुझे बताइएगा हम आपकी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है?
1: ठीक है, मेरा दोस्त सुन रहे हैं।
0: जी बताइए आपके दोस्त क्या सुन रहे
1: हैं?
0: जी चलिए, सबनी लाड़काना वारन के पेंजे प्रोग्राम में भलीकार चाहूँ था, मेहरबानी तवा जी तवा ज्वाइन के असांखे। और जनाब आपको बताते चले कि हाँ ब्रेक में कुछ वक्त एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, आपका बैलेंस भी मुक गया या पैकेज खत्म हो गया? नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: जनाब, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है?
2: जी मैं डीके बात कर रही हूँ।
0: डीके, वेलकम इन अवर शो, आप बताइए फुर्सत के लम्हात में क्या मसरूफियत होती है आपकी? अच्छा, रेडियो या टेलीविजन से कोई एक अच्छी सी बात जो आपने सीखी हो जो आपको हमेशा याद रहती है?
2: सीखा है,
0: अच्छा कुछ शेयर करेंगी सब सुनने वालों से कोई एक बात?
2: रेडियो से मैंने सच ही सुना है, न्यूज़ भी सच होती है, खबरें सच होती है, प्रोग्राम जो भी बताते हैं वो भी सच होता है।
0: हैला नहीं, मेरा झूठ बोलने का दिल चाहता है कभी कभी।
2: सब सच
0: आमीन आमीन इंशाल्लाह। आप भी हमें दुआओं में याद रखा करें, हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे लिसनर्स हमारे लिए दुआ करते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल, ऐसे पॉजिटिव सोचेंगी जरूर कबूल होगा। हमारे साथ नेगेटिविटी ये है कि हम कोई भी काम शुरू करने से पहले कहते हैं कि काम होना ही नहीं है, तो वो क्या होता है, वो नेगेटिविटी इतनी हमारे अंदर हो चुकी है महफ के हमें हर चीज नेगेटिव ही दिख रही होती है। तो जो नहीं होने वाली चीजें भी होती है ना, आप स्टार्ट में ही कहा करें इंशाल्लाह ये हो जाएगा, और यकीन करें सब हो जाता है।
2: हाँ, हो जाएगा।
0: चले मेरे हक में भी दुआ कीजिएगा आप। बहुत शुक्रिया आप शामले प्रोग्राम हुई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। चले जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि रेडियो से कुछ अच्छा भी सीखने को मिलता है आप लोगों को, वरना मुझे ऐसा लगता है आप लोग सिर्फ गाने ही सुनते हैं रेडियो पर। मैं ये चीज नोट करती हूँ, जलाल हलायो, उर्स बुधायो, फौजिया हलायो, ETC, ऐसा ही होता है ना हमारे लिसनर जब भी कॉल पे आते हैं। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है? भली घर चौं था दादा, तव्हां खे क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से? अच्छा सबको सलाम दे दें आप, ऐसा करें जी, ठीक है? बुधायो जी,
1: ठीक है,
0: सबनी बारा वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, आपने हमें याद किया, प्रोग्राम का हिस्सा बने और सबको अपने होने का एहसास दिलाया। और नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन, अभी अभी मेरी घड़ी पर नजर पड़ी है, जल्दी से बता दें टॉपिक की बात।
3: बहुत खूबसूरत है, सुनती हूँ आपकी, आपका शो सुनती हूँ में, और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती हूँ।
0: चले गुड हो गया, बहुत शुक्रिया यास्मीन, थैंक यू,
3: आपको हमेशा खुश रखे।
0: सेम टू यू, शुक्रिया, रब सबको खुश रखे, सब खुश रहें, सलामत रहें। ब्रेक पे जा रहे हैं जनाब, ब्रेक के बाद आपको अगेन ज्वाइन करते हैं।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो

0: के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8569।

0: की आवाज।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: FM 88 नेटवर्क।
3: जेको अवा जो पैगाम पहुंचाए हर हर।

0: पालतू डॉग्स होते हैं वो आने वाले वाकयात को वक्त से पहले भांप लेते हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इसकी हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ है। माहिरीन का कहना है कि कुत्तों के पास कोई भी माकूफ अल फितरत ताकत नहीं होती, लेकिन इनकी हिस्से समात सूंघने और माहौल को महसूस करने की जो सलाहियत होती है ये इंसानों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से वो बास खतरात या तब्दीलियों का अंदाजा इंसानों से पहले लगा लेते हैं। और तहकीक के मुताबिक जो फालतू डॉग्स होते हैं बुलंद फ्रिक्वेंसी की आवाजें सुन सकते हैं, जमीन में आने वाली मामूली सी लर्जिश को भी जल्द महसूस कर लेते हैं। यही वजह है कि जलजले के आने से कबल ही इनमें बेचैनी और गैर मामूली रवैये जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। डॉग्स का फील्ड ऑफ विजन भी इंसानों से ज्यादा वसी होता है, जिसके बायस वो दूर की हरकत तब्दीली को जल्दी भांप लेते हैं। अगरचे वो इंसान की तरह बारीक तफसीलात रंग वाजे नहीं देख सकते, ताहम इनके सूंघने की जो सलाहियत होती है गैर मामूली हद तक ताकतवर होती है। और साइंटिस्ट के मुताबिक डॉग्स जो है वो इंसानी पसीने या सांस में होने वाली मामूली कीमियाई तब्दीली को भी महसूस करते हैं, जिससे इंसान की जहनी कैफियत खौफ दबाव बाज़ औक़ात बीमारियों के इशारे भी मिल जाते हैं। तो जनाब ये खुददाद सलाहियतें होती हैं, रब जिसे चाहे नवाजे। क्रिकेट तेज हो गई है, लेकिन जिम्बाब्वे में होने वाले मैच में शायद क्रिकेट को पड़ लग गए। एक टीम ने 50 ओवर में 882 रन बना डाले। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है क्रिकेट तेज से तेज तर होती जा रही है और T20 फॉर्मेट ने इसकी तेजी को मजीद जला बख्शी है। वहीं वनडे जिसमें 250 स्कोर मैच विनिंग समझा जाता था, लेकिन अब टीम 400 बनाकर भी हार जाती है। तहम जिम्बाब्वे में ऐसा हुआ हैरान कुन मैच जिसमें क्रिकेट को ऐसे पड़ लगे कि रन्स की नई बुलंदियां छू ली गई। और ये लिस्ट ए मैच था जो स्कॉर्पियंस के क्लब और मैथियन लाइन्स के दरमियान खेला गया। स्कॉर्पियंस के कप्तान प्राइस मक्काजा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इसके लिए बल्लेबाजों ने मैदानों में जो है ना रन का तूफान बरपा कर दिया। जब पूरे 50 ओवर खेलकर टीम मैदान से बाहर आई, स्कोर बोर्ड पर 4 विकेटों पर रिकॉर्ड था 882। स्कॉर्पियंस की जानिब से एक ट्रिपल सेंचुरी, एक डबल सेंचुरी और एक सेंचुरी बनाई गई। तकोंडा में डोम्बो ने 143 गेंदों पर 302 रन बनाए और वेनफिड मिटेंडे ने सिर्फ 75 गेंदों पर 13 छक्कों की मदद से 203 रन बनाए, जबकि गैब्रियल जाया ने 49 गेंदों पर 22 चौकों की मदद से 110 रन की बाजी खेली। जवाब में मैथियन लाइन्स की टीम सिर्फ 28 रन तक महदूद रही। हूँ स्कॉर्पियंस ने क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी जीत 794 रन के साथ जो है वो अपने नाम की, और सबसे ज्यादा रन बनाने वाली तस्लीम शुदा स्टेट टीम इस वक्त बिहार की मिल्कियत है, जिसने विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान रांची में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 574 विकेट पर बनाए थे। विभू सूर्यवंशी ने मैच के दौरान 84 गेंदों पर 190 रन बनाए थे। तो जनाब ये जो है ना ये चेंजिंग आपकी और हमारी लाइफ का हिस्सा, और अच्छी बात है कि कुछ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चेंज गुड होता है। तो ऐसे करते हैं
1: नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: रहमान रहीम, मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا.
5: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
3: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے. جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک الابیب رشتہ بھروسے کا.
6: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: अब आप सुनेंगे
2: छो एम के एम जो शबीर कुरैशी पारां पेश कयल ठहराउ जी हुकूमत मुखालफत कई। घर वज़ीर ज़ालनि जा चवनि त सुप्रीम कोर्ट 15 सालनि वारी उमिरि जी रियायत ख़तम करे छॾी आहे, रुगो 5 साल रियायत ॾेई सघिजे थी। अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जा पाबंद आहियूं। सीनियर वज़ीर सैजल इनाम चवनि त पीपल्स बस सर्विस में समूरी सिंध में हलाई वेंदी, कराची जी बहितरी ते बि ध्यानु आहे।

अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जो मक़सदु हथियार फिटा करणु नाहे, ईरान जे मफ़ादनि, इज़त ऐं वक़ार जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त तेहरान कंहिं बि सूरत में ईरान ऐं ईरानी अवाम जे हक़नि ते हथु न खणंदो। समूरी तवानाई सां गॾु ईरानी अवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं। ईरानी ख़ातिमुल अंबिया ब्रिगेड चयो आहे त ईरानी फ़ौज जो हथ बि ट्रिगर ते आहे, हमिलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। तकड़ी फैसलाती ताक़तवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। कोशिशूं जारी रखण ते ज़ोर। शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान खिते में जटादार अमन जे क़याम जे लाइ सफारती कोशिशूं जारी रखंदो। रहमान सां कराची में मुलाक़ात। सूबे वज़ीरनि मौलाना फज़ल रहमान खे बिलावल भुटो ज़रदारी तरफ़ां मौलाना फज़ल जे लाइ 28 तरमीम थींदी। निज़ाम तब्दील थींदो या वरी माशाल्लाह बि लॻी सघे थी। 28 आईनी तरमीम बाबति फ़ैसिलो पार्लियामेंट

वेठंदा माण्हुनि खे करणो आहे। असां पार्लियामेंट खां ॿाहिरि आहियूं। नौशहरो फिरोज़ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर मुर्शिद जतो चयो आहे त अपोज़िशन जी सूरतहाल ते नज़र आहे, हिकमत अमली जोड़ी आहे, ज़ाहिर नथा करे सघूं। सिंध खे माफ़िया खां आज़ाद कराइण वारी जिदोजहद जारी रखंदुसि। मुर्शिद जतो ऐं संदसि भाउ ख़िलाफ़ 8 केसिस जी ॿुधणी 11 जून ताईं मुलतवी। सिंध में पाणीअ जी शदीद खोट बावजूद पंजाब तरफ़ां ज़बरदस्ती खोलियल गैर कानूनी लिंक कैनाल ज़रिए पाणीअ जी खणत जारी। सिंध जा चूंडल नुमाइंदा आबपाशी खाते मामले ते ख़ामोशी इख़्तियार करे वरिती। ज़रियनि मुजिब पंजाब सीजे लिंक कैनाल ज़रिए 10,000 क्यूसिक्स ऐं टीपी लिंक कैनाल ज़रिए 8,122 क्यूसिक्स पाणी गुज़िरियल 4 ॾींहनि खां रोज़ानो जी बुनियादनि ते खणी रहियो आहे। सिंध में पाणीअ जी सख़्त खोट बावजूद इरसा में मौजूद सिंध जे नुमाइंदनि ऐं आबपाशी खाते कंहिं बि क़िस्म जो एहतजाज न कयो। पिंके जे केस में केतिरा ई वॾा नाला बि साम्हूं आया आहिनि। पिंके खे घणो ग्लैमराइज़ न फिल्म ठही वेंदी। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे आईजी सिंध जावेद आलम ओठो चयो आहे त पिंकी कराची में घटि लाहौर में वधीक रहंदी हुई। मंशियात बाबति टास्क फोर्स जोड़े रहिया आहियूं, शहरी बि मामले ते इतलाउ ॾियनि।

0: लाड़कानो जो मोरिया लूप बंद आपाशी खाते के लिए सोनी झिपकी बनल आपाशी खाते मोरिया लूप बंद के बोडी जी सीजन में कमाई जो जरियो बनाए छो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइंस सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने मिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: खुशखबरी हानी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385569338999।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर। राबते जे लाइ 0320180003।
7: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और

वो आपसे दूर रहने का इशारा देते हैं। पुरकशिश शख्सियत के ख्वाहिशमंद अफराद मुस्कुराहट की ताकत से किसी को भी अपनी जानिब माइल कर सकते हैं। इसलिए आज से आप जब भी उदास हो तो नेगेटिव सोच को कभी भी अपने ऊपर गालिब ना आने दें और मुस्कुराना मत भूलें, क्योंकि नफरत वो आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। और इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम अपने रवैये में तब्दीली लाएं, अपनी सोच बदलें, तो ये आग ठंडी हो जाएगी। मोहब्बत वो ताकतवर जज्बा है जो हर बुराई को दूर और खत्म कर देता है। नफरत, जलन, हसद, बुगज ऐसी आदतें हैं जो हर बुराई को जन्म देती हैं, और मोहब्बत वो फूल है जो हर बुराई को मिटा देता है। एक दूसरे से बहन भाइयों जैसी मोहब्बत करना, समझना, एक दूसरे का ख्याल रखना ही इंसानियत है। अगर ये नहीं होता तो इंसान नहीं बल्कि सिर्फ जिंदगी जीने वाला आदमी रह जाएगा। मोहब्बत, खुलूस, मुर्रबत ऐसे जज्बात हैं जिनको अपनाने में हमारा कुछ भी खर्च नहीं होता, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। इसके खिलाफ नफरत, जलन, हसद वो जज्बात हैं जिसमें इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है, बल्कि इंसानियत तबाह हो जाती है। और जिस आदमी में ये आदतें आ जाती है ना, इसको चैन सुकून नहीं होता, जिससे उसकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है और फिर इसके साथ दूसरे इंसानों का भी नुकसान होता है। अच्छा, जो लोग हमेशा मनफी जो है रवैये रखते हैं, आपने नोट किया होगा बेसिकली जब भी आप उन्हें नोट करेंगे वो तन्हा ही दिखेंगे आपको। तो मुस्कुराहट जो है ना, मुस्कुराहट दिलों को जीतने का फन होती है। तो हमेशा जो है ना, आपने पॉजिटिव रहना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराहट आपकी शख्सियत का हिस्सा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा जी, अक्सर कहती है ईद में वही बात होगी ना जो पहले होती थी, मैंने आपसे ईदी लेने आना है। ये ईद, ईद जो है ये ईदी वाली ईद थोड़ी ना है। अच्छा, हमें अच्छी बकरा ईद को ना गोश्त वाली ईद कहा जाता है, ठीक है? तो हाँ ठीक है, मैं आपको गोश्त जो है ना वो कुर्बानी वाला जो गोश्त होता है वो दे दूंगी, ओके? ये ईदी वाली ईद नहीं है अक्सा, और आप मुझसे ईदी लेंगी दिल के बहलाने को, गालिब ये ख्याल अच्छा है। गोश्त वाली ईद है ना, तो आपको गोश्त मिलेगा, ठीक है? कुर्बानी वाला जो गोश्त होता है, ओके? ठीक है ना? अच्छा जी, अपने लिसनर्स को बताते चले जी, अमीरपुर खास एफएम 88 के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सब दोस्त हमारे। और जनाब, ये तो मैंने जो है आपको जो कुछ टिप्स दिए हैं यकीनन आपके लाइफ में आपके काम आएंगे। और स्माइलिंग फेस जिनका होता है ना, उनसे लोग जो है मेलजोल बहुत पसंद करते हैं। पर्सनली मैंने एक चीज नोट की है, तो मैंने सोचा भाई आपके भी मालूमात में इजाफा करते चले, बिकॉज वी आर फैमिली। और हम लोग जो है, मेरी पूरी पूरी कोशिश ये होती है कि जो 2 hours आप 3 to 5 प्रोग्राम सुन रहे होते हैं ना, इसमें काम की बातें ज्यादा से ज्यादा ऐड करूं, ताकि आपको प्रोग्राम सुनने से फायदा भी हो, ठीक है जी? और जनाब, यहाँ पर जो है प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब

वन एंड ओनली एवर ग्रीन सिंगर है इनका गाना. आप कभी भी किसी भी मौसम में किसी भी मूड में सुने, मूड फ्रेश हो जाता है. ये मेरी आजमाई हुई बात है. तो आइए जनाब एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं आपको, आप इंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को. इस ट्रैक के बाद आपको हम दोबारा ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद. फिलहाल मलका तरन्नुम नूर जहां का प्यारा सा गीत आप सबके लिए.

0: बैठो तो सही।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम एटीटल ब्रेक।
2: बाहर से भेजे गए रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम।
3: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एंड जदीद फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी एंड चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म एंड दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: आमीन नाज़रीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।

0: 588 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

ना करे। उसे देखकर तू रुक पड़े, वो नजर झुका के चला करे। तुझे हिजर की ऐसी झड़ी लगे तो मिलन की हर पल दुआ करे। तेरे ख्वाब बिखरे टूट कर तो किरची किरची चुना करे। तू नगर नगर फिरा करे, तू गली गली सदा करे। तेरे सामने तेरा घर जले, तेरा बस चले ना बुझा सके। तेरे दिल से यही दुआ निकले, ना घर किसी का जला करे। तुझे इश्क हो फिर यकीन हो, उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे। मैं कहूँ के इश्क ढोंग है, मैं कहूँ के इश्क ढोंग है, तू नहीं नहीं कहा करे। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, कोई तुझको उससे जुदा करे। प्लीज मैं मुझसे ये इस पोइट्री की रिक्वेस्ट नहीं किया करे। अक्सर कहती है गुल नहीं करूँ ना, हाँ मेरा तो दिल यही चाह रहा है कि नहीं करूँ, मैं एक हफ्ते और छुट्टी कर लूँ। अच्छा क्या कह रही है, गोश्त का मैंने क्या करना है? गोश्त बना के खाइएगा, कढ़ाई बनाइएगा गोश्त की, या फिर आप उसकी बारबेक्यू कीजिएगा। गोश्त वाली ईद पे भी सच्ची में मुझे ईदी लेनी है, मैं ईदी लेती हूँ चाहे आप ईदी नहीं दें। ओ माई गॉड, पर गोश्त मुझे नहीं चाहिए कुछ। लास्ट में हो सके तो आज माजिद गाऊँ ये सॉन्ग नहीं, प्लीज लास्ट में जो है एक और है उस्ताद नुसरत फतेह, वो तो वो प्ले करेंगे। अक्सर कहती है गुल जब आप जब भी पोइट्री शो करें 9 से 11, घर नहीं जाती हूँ ठीक है, मैं अपने घर वालों से यहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ 9 से 11, मतलब 8 से 9 भी प्रोग्राम करूँ, 3 से 5, 9 से, मतलब प्रोग्राम खत्म हो जाए, मैंने आज तो दीवार में सर दे ही मारना है। मुझसे हारता है। ओके, मैं भी इंसान हूँ। और उसके बाद आप 8 से 9 भी 1 घंटे बोलती हूँ मैं। अब मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि तमाम वक्त मैं ही बोलती रहूँ, क्या मैं

सीनियर वजीर शर्जीली नाम अहमद नासिर शाह बेनती जे यू आई सरबराह मौलाना फजलुरहमान सां कराची में मुलाकात। सूबाई वजीर मौलाना फजलुरहमान के बिलावल भुट्टो जरदारी तरफा गुलदस्तो भी पेश कयो। मौलाना फजलुरहमान चयो त सियासी धुरियन के आइन पार्लियामेंट ए जमहूरियत के तहफ़ुज़ लाइ गॾु थियणो पवंदो।

अठावी तरमीम थींदी निज़ाम तब्दील थींदो या वरी मार्शला बि लॻी सघे थी। अठावी तरमीम बाबति फ़ैसिलो पार्लियामेंट में वेठल माण्हुनि खे करणो आहे। असां पार्लियामेंट खां ॿाहिरि आहियूं। नौशेरो फिरोज़ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻूणे वफ़ाकी वज़ीर मुर्तज़ा जतोई चयो आहे त पोज़ीशन जी सूरतहाल ते नज़र आहे। हुकूमत अमली जोड़ी आहे, ज़ाहिर नथा करे सघूं। सिंध खे माफ़िया खां आज़ादु करण वारी जिदोजहद जारी रखंदसि। मुर्तज़ा जतोई ऐं संदसि भाउ ख़िलाफ़ 8 केसनि जी ॿुधणी 11 जून ताईं मुलतवी। सिंध में पाणी जी शदीद कोट बावजूद पंजाब तरफ़ां ज़बरदस्ती खोलियल गैर कानूनी लिंक कैनाल ज़रिए पाणी खणत जारी। सिंध जा चूंडियल नुमाइंदनि ऐं आबपाशी खाते मामले ते ख़ामोशी इख़्तियार करे वरिती। ज़रियनि मूजिबि पंजाब सी जे लिंक कैनाल ज़रिए 10,000 क्यूसिक ऐं टी

लिंक कैनाल जरिए 8,100 वाहवी क्यूसिक पानी गुजरियल चइन डी का रोजानी बुनियाद से खड़ी रो है। सिंध में पानी की सख्त खोट बावजूद हिस्सा में मौजूद सिंध के नुमाइंद आबपाशी खाते कें भी किस्म एहतजाज न कयो। पिंकी के केस में केतरा ही वा नाला भी सामू आया हैं। पिंकी के घो ग्लैमराइज न कयो वने मथस फिल्म ठही वेंदी। कराची में मीडिया से गालाइंदे आईजी सिंध जावेद आला मोडो है त पिंकी कराची में घट वधीक लाहौर में रहंदी हुई। मनशियात बाबत टास्क फोर्स जोड़े रहा हूं। शहरी भी मामले से इतला दियन।

लाड़काणे जो मोरियालो बंद आबपाशी खाते लाइ सोनी जिती बणियल आबपाशी खाते मोरियालो बंद के बोर्ड जे सीज़न में कमाई जो ज़रियो बणाए छॾियो अरबे रुपया खर्च करण बावजूद लाड़काणे जो मोरियालो बंद मज़बूत न थियो बोर्ड जी सीज़न में बंद जी मज़बूती लाइ उछलायल पत्थर बि लड़ी वियो आबपाशी खाते पारां बंद खे महफ़ूज़ बणाइण लाइ मुस्तक़िल स्कीम ठाहिण बदिरां फ्लड फाइटिंग ते बाड़नि जो सिलसिलो जारी 2024 में बि साॻी साइट ते वॾी मक़दार में पत्थर उछलाया विया जेके बि ज़ाया थिया 2025 में दरिया में बोट दौरान फ्लड फाइटिंग में कोड़े रुपयनि जो पत्थर उछलायो वियो जेको बि लुड़ी वियो आबपाशी खातो बोट ख़तमु थियण खां पोइ हथ हथ ते रखी वेही रहियो।

0: इस्लामाबाद जी अदालत ने टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस जो फैसलो बुधाए छो। अदालत जवाबदार उमर हयात के मौत की सजा बुधाए छी। जवाबदार के 20 लख रुपया दंड भी भरणो पवंदो। मकामी अदालत के जज अफसल मजूका धुरियन जा दलील बुधन बाद महफूज कल फैसलो बुधायो। एसटीपी के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हमीद मेमण जो भाव सईद मेमण बलूचिस्तान में अगवा। नौशेरो फिरोजवासी अगोणे एक्साइज डायरेक्टर सईद मेमण के अगवा के वारिसन पारा तस्दीक। एसटीपी अगवाण अब्दुल हमीद मेमण दहशतगर्द भाव सईद अहमद मेमण के खुशदार में अगवा कर भाव बाजियाब कराया वे। सिंधड़ी भरसा पसंद के पड़े ता प्लान में अगवा कल टे डिग्री बाजियाब। एएसआई समेत बजवाबदार गिरफ्तार। डीआईजी मीरपुर खास मूजिब डिंगरी आसिया रेहाना नाजिया की बाजियाबी बाद वाक़े जो केस दाखिल किया है। जवाबदार अफजाल एएसआई बहादुर के गिरफ्तार किया है। मेडिकल बाद डिंगरियन के अदालत में पेश किया वो। सांगण में 14 वरियन की नींगरी मुबैना तौर अगवा। अंबर जो धी सा गड पढ़ंदड़ शागिर्द ते धी के अगवा करने जो इल्जाम। मुबैना तौर अगवा थियल शागिर्दाणी की माँ चाह संदस धी इकरा के स्कूल में गड पढ़ंदड़ शागिर्द अगवा किया है। खेस बाजियाब कराया वे। भाट में भी नारी मुबैना तौर हथियारबंद हथा अगवा। पी की फरियाद से 3 जणन खिलाफ केस दाखिल। नजीर अहमद मौर्य है जवाबदार धी नजमा के अगवा करण बाद सोना जेवर ए 5 लख रुपया भी खड़ी व्या।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 03

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: असांजो पाणी साफ़ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था अचूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
1: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो।
0: बाबा इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
2: साफ़ पाणी महफ़ूज़ ज़िंदगी दस्तनि खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एटमाट, मां अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी।

0: आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई, आसिम हुसैन आरई, 03073592120।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 91 896

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301 380 8347।

0: तब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94। अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जी एफ एम 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हिमायत सां दहशतगर्दीअ जी ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। पाकिस्तान जी तरक़ीअ खे प्रोपेगेंडा या परॾेही सरपरस्तीअ में थींदड़ दहशतगर्दी ज़रिए रोके नथो सघिजे। जदीद जंगी तरीक़ेकार तेज़ीअ सां तब्दील थी मार्शल जदीद प्रेश गॾियल सां रहियो।
2: नौकरी लाइ उमिरि जी हद में 15 साल करे छॾियो। एम गरवज़ीर सियाल 17 सालनि वारी उमिरि जी रिहाई आहे जंहिंजी अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जा पाबंद आहिनि। शर्जील इनाम अहमद चयो त पीपल्स बस सर्विस बि समूरी सिंध में हलाई वेंदी। कराची जी बहितरी आहे।
3: Getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while. Because we've had very big discussions with Iran. And we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
1: अमरीकी सदर सऊदी अरब यूए जी दरख़्वाहत क़त्ल दरख़्वास्त कई हुई, जंहिं ते ईरान ते अॼु रिथियल हमिलो 2 खां 3 ॾींहनि लाइ मुलतवी कयो। लॻे थो त ईरान सां डील जो सुठो मौक़ो आहे। अहिड़ो मुआदो चाहियूं था जेको न रुगो अमरीका पर विच ओभर समेत समूरनि मुल्कनि लाइ क़बूलियत जो हुजे।
2: अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो मक़सदु हथियार पिटा करणु नाहे। ईरान जे मफ़ादनि इज़त ऐं वक़ार जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पिज़िशकियान चयो आहे त तेहरान कंहिं बि सूरत में ईरान ऐं ईरानी अवाम जे हक़नि तां हथ न खणंदो। समूरी तवानाई सां गॾु ईरानी अवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं। ईरानी ख़ातम उलंबिया ब्रिगेड चयो आहे त ईरानी फ़ौज जो हथ बि वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। तकिड़ी फ़ैसिलाइती ताक़तवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी।
1: वज़ीर आज़म शाहबरी हमनसब सां फ़ोन ते राबितो। बितरफ़नि लाॻापनि ऐं विच ओभर जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। ॿिन्ही अॻवाननि जो ख़िते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखण ते बि ज़ोर। शहबाज शरीफ़ चयो त पाकिस्तान कम लाइ सफ़ारती
2: मौलाना फज़लुर रहमान सां कराची में मुलाक़ात। सूबाई वज़ीर मौलाना फज़लुर रहमान खे बिलावल भुट्टो ज़रदारी तरफ़ां गुलदस्तो बि पेश कयो। मौलाना फज़लुर रहमान चयो त सियासी धुरियुनि खे आइन, पार्लियामेंट ऐं जमहूरियत जे तहफ़ुज़ लाइ गॾु थियणो पवंदो।
4: मां पहिरियों ई चयो त कुझु न कुझु थींदो।

0: सिंधी या निज़ाम तब्दील थींदो या मां इहो चयो त माशाल्लाह लॻी सघे थो गैब जो लमा अलाह खे आहे छा थियणो आहे वाह ख़बर ख़ुदा खे पर अठावीह तरबी निज़ाम जी तब्दीली या ॿियूं ॻाल्हियूं सभु हलनि पियूं हाणे फ़ैसिलो उन्हनि ते करिणो आहे जेके असेंबलियुनि में वेठा आहिनि उन्हनि जे सपोर्ट सां पास थींदी उन्हनि जे सपोर्ट सां पास कोन थींदी उहो कहिड़ो फ़ैसिलो था कनि उहा ॾिसण वारी ॻाल्हि आहे
1: अठावीह तरमीम थींदी निज़ाम तब्दील थींदो या वरी मार्शला बि लॻी सघे थी अठावीह आइनी तरमीम बाबति फ़ैसिलो पार्लियामेंट में वेठल माण्हुनि खे करणो आहे असां पार्लियामेंट खां ॿाहिरि आहियूं नौशर फिरोज में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई चयो आहे त अपोज़िशन जी सूरतहाल ते नज़र आहे माफ़िया खां आज़ादु कराइण वारी जदोजहद जारी रखंदुसि मुर्तज़ा जतोई ऐं संदसि भाउ ख़िलाफ़ 8 केसनि जी ॿुधणी 11 जून ते मुलतवी
2: सिंध में पाणी जी शदीद कोट बावजूद पंजाब तरफ़ां ज़बरदस्ती खोलियल गैर क़ानूनी लिंक केनाल ज़रिए पाणी खणत जारी सिंध जा चूंडियल नुमाइंदनि ऐं मामले ते ख़ामोशी

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खोना तो खे मुझे रो पाए तैयार थे जो
2: तू आज भी हसी
1: थोड़ो पाए तो देखार
3: ना माँ माँ थकी पई आया
1: ना पुटा ये थकना है रत जी कमी आए दिसता केडू ना फिको थी हुआ है तुझो चेहरो
3: छा कया माँ
1: छह महीना थी वैन पुट तू उम्मीद से आई आई हाने वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी खचू भाजू खाइंदी कर पुट तोखे खबर है असा त मेवन जो खलूं खाई विंदा हुआ से उनन साई त खून ठांदो है इनसा न तोखे कुछ थिंदो अ नई बा रखे पुट हाने तू मां थण वाली आही जो ख्याल रखन बेन खां प वधिक जरूरी है
2: मेरी
4: जड़े माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
5: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
6: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐ रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहे
5: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हाल
6: प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
7: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
8: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान नक्द होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
9: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201

0: 00003.
1: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: जिले बेन ता तकलीफ का आहे अहिड़ी तरह जेकॾहिं का औरत आहे लेडीस आहे इवन उहा घर जी अमड़ आहे वॾी आहे उनखे फालि थिए थो त उनजी भली धीउ हुजेसि भली न हुजेसि या ॿियो को रिश्तो हुजेसि भाइटी हुजेसि भाणे जी हुजेसि भेण हुजेसि पहिरियां शुरूआती ॾींहनि में 15 ॾींहं 8 ॾींहं केतिरी बि केयर कनि ख़्यालु कनि पर अॻिते हली करे उहे ई साॻिया बेज़ार थी वञनि था हिकु बीमार माण्हू मां सभु माण्हू बेज़ार थी वेंदा आहिनि छो जो उहो हिकु जॻह ते पइजी वेंदो आहे उहो अपाह थी वञे थो 24 कलाक सिर्फ़ु हिकु ई जॻह ते मौजूदु आहे उनजो खाराइणु आहे प्यारणु आहे यानी उहो नंढे ॿार खां बि वधीक नंढो ॿार खणण में उनमें आसान हूंदो आहे माउ उनजी ख़िदमत करे थी उनखे पाले करे वॾो करे थी पर जॾहिं उंधो वॾो हूंदो आहे त उहो इंसान जे लाइ मुश्किल बणिजी वेंदो आहे जीअं मूं चयो त उनखे वॉशरूम ताईं वठी वञणु उनखे फ्रेश कराइणु तंहिं करे इंसान खे पंहिंजे सिहत जो बे इंतिहा ख़्यालु रखणु घुरिजे तंहिंजे करे जीव आहे त जहान आहे जीव ख़ुशि जहान ख़ुशि तव्हां ख़ुशि आहियो त हीअ दुनिया अव्हांजे मक़सद जी आहे अव्हांखे ठीकु लॻंदी डॉक्टर साहिब जो ख़ासि महिरबानी आहिनि पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी ॾींदा आहिनि असांजे स्टूडियो में अची करे असांजा GFM जा जेके ॿुधंदड़ आहिनि मौज़ूज़ ॿुधंदड़ आहिनि असांजे लाइ निहायत क़ाबिल एतराम आहिनि उन्हनि जे लाइ डॉक्टर साहिबु अची करे मशवरो ॾींदा आहिनि सिहत बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि तव्हांखे इहो ॿुधाईंदासीं त डॉक्टर साहिबु हर जुमे छंछर ऐं आचार ते यानी जेके हफ़्ते जा फीस फलाही तौरु यानी चेकअप फीस डॉक्टर जी फ्री हूंदी आहे मुफ़्त हूंदी आहे अवां डॉक्टर साहिब खे ॾेखारे सघो था 14 खां वठी करे हर सूमर ताईं यानी हफ़्ते जा 6 ॾींहं 14 ख़मीस जुमो छंछर ऐं आचार ऐं सूमर यानी हफ़्ते जा 6 ॾींहं ऐं बाक़ी अंगारे वारे ॾींहुं डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोतरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर लाइव कॉल जो नंबर तव्हांखे नोट कराईंदा हलूं था 0301-2196-8519-6851 डॉक्टर साहिब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन डॉक्टर साहिब जो 30 सालनि जो तजुर्बो आहे 30 साल हिकु ज़िंदगी आहे इंसान जी अधु साल जीअं इंसान जी एवरेज ज़िंदगी 60 साल आहे असांजे पाकिस्तान में त अहिड़ी तरह यानी अधु ज़िंदगी हिन जो डॉक्टर साहिब जो तजुर्बो आहे डॉक्टर साहिब जो एतिरो वॾो तजुर्बो आहे इंसान जी अधु ज़िंदगी एतिरो डॉक्टर साहिब जो तजुर्बो आहे ऐं डॉक्टर साहिब खे ॾेखारे सघो था होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन डॉक्टर साहिबु जेको माहिरु आहे गुर्दे पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कनि था अव्हांखे कहिड़ो बि पुराणो संदनि जो सूरु हुजे जोड़नि जो सूरु गोॾनि जो सूरु हुजे नकु या कन या गले जा जेको पुराणो नज़लो आहे निछूं मथे जो सूरु आहे अव्हांखे अधु मथे जो सूरु आहे उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु करे थो नज़र जी कमज़ोरी आहे कन जो वहणु कन जो सूरु घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ फालिज आहे जेको अधरंग हुजे असां ज़िक्र कयोसीं खंघि आहे TB मादे जो सूरु मादे जी अल्सर स्त्री जो वधणु जिगर हेपाटाइटिस BC गुर्दनि जो इन्फेक्शन चहिरे जो रंग सांवरो चेप फुरड़ियूं ॿारनि में कशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु आहिनि सभु खां पहिरियां असां डॉक्टर साहिब खे ख़ुशि आमदी चवंदासीं असीं ज़्यादा अहिड़ो टाइम वठियासीं इंट्रो में ऐं जेके दोस्त कॉल कनि था उन्हनि खां असीं 5 मिंट सिर्फ़ु माज़रत खां आहियूं बाद में उन्हनि जी कॉल अटेंड कंदासीं जो डॉक्टर साहिब खे असां पहिरियां ख़ुशि आमदी बि चऊं ऐं डॉक्टर साहिब अॼु कहिड़े मौज़ू बाबति ॼाण ॾींदा साईं अस्सलामु अलैकुम
1: वालेकुम अस्सलाम साईं
0: डॉक्टर साहिब ठीकु आहियो त बि ठीकु आहियो
1: जी अलाह ताला जा करोड़
0: अॼु कहिड़े मौज़ू बाबति ॼाण ॾींदा असांजे मौज़ू ॿुधण खे साईं
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि रहमानिर रहीम सलाहु अलैहि वसलम पहिरियां त तारीफ़ूं उन रब पाक जूं जेको असांखे जारे थो खाराए थो रोज़ी ॾिए थो ख़ुशी ॾिए थो ऐं सभिनी ज़मीनी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक में ख़बर आहे त मेहरापुर शहर में हफ़्ते जा 6 ॾींहं जुमे जो ॾींहुं छंछर जो ॾींहुं आचर जो ॾींहुं जेको असांजो चेकअप फीस फ्री रखियल हूंदो आहे ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो सूमर जो ॾींहुं अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि रहंदी आहे 14 ऐं ख़मीस असांजे शहर मेहरापुर में को आहे सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं ऐं 3 ॾींहं जेको आचर जो ॾींहुं उहो असांजो ख़सूसी हिकिड़ो पैकेज हूंदो आहे जेको जेके बेपोहच हज़रात हूंदा आहिनि ग़रीब हज़रात हूंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ अहिड़े तरीक़े सां असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ऐं जेकी प्रोग्राम उन जे हवाले सां जेको असां कंदा आहियूं सिहत जी ॻाल्हि उन में जेको आहे सो मौज़ू जेको सिहत जे उनवान ते हूंदो आहे उन सां असां हिकिड़ी अवेयरनेस जे हवाले सां पंहिंजे पेशंट्स ताईं हिकिड़ी नॉलेज पहुचाईंदा आहियूं त कहिड़ी बि बीमारी आहे उनजे बारे में अव्हां ताईं जल्दी जल्दी जेको आहे सो हिकिड़ी ॼाण हुजे त जीअं तव्हां जल्द अज़ जल्द उनजी कंहिं जेकॾहिं बीमारी आहे त उनजो रोकथाम जे लाइ तव्हां को क़दम खणी सघो था अहिड़ी तरीक़े सां या असां हाईलाइट कंदा आहियूं उन्हनि मर्ज़नि खे उन्हनि बीमारियुनि खे ऐं उन्हनि

0: पेट में सूर थो माना जो खाए तो कटी तो करे मादे की अल्सर होंगी या अड़ी जो खाए तो उल्टी कह हों रत की उल्टी का काम थी अचे
1: नाकि
0: खाली माना उल्टी थी अचे अच्छा खाधो नो वे मादे जो मसलो अस डॉक्टर साहब इलाज मौजूद है तुम भले सुबह ही वही अचो मसलो को अल्लाह सिफा दियण वाली है रूबरू दिखारे वो प्रॉपर इलाज कराइन इनशाला सही थी वो मसलो ही को डॉक्टर साहब वहाँ बुधा जी सर
2: जी साईं बिल्कुल दोस्त के बुधाई जी पे गाल करें तो अर्क सौंफ जो अर्क सौंफ है वे जीरो अदद चमची राजो पानी में पिसाए रखो सुबह जो नेराने को काढ़े वो पानी पीरें इनशाला तला उन जी भी पेट जहाँ अमराज हैं खत्म थी वेंदा या पेपरमिंट शरबत मिलो है वो वही बसानी पीरे सकता फूदने की टिक्कियों चूसराए सकता काफ़ी फर्क पे इन जो इस्तेमाल ना करा सको तो रूबरू क्लिनिक दिखारो अवं इनशाला तला के मुकम्मल तरीके से ट्रीटमेंट दींदी इनशाला तला ठीक थी जी सर
0: प्रोग्राम हिस्से अच्छी गाल जी मेरा पर एफ एम 94 जो आवाज़ तवाज समातुन तीन पहुंचे पो तवजों मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी असा गडा ही असे स्टूडियो में मौजूद आन सिंध जहा मशहूर व मारूफ़ डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब डॉक्टर साहब जी खास मेहरबानी आन असि प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सको था 0301 96 8051 प्रोग्राम में कॉल की तरफ वेंदी ऐसों किथा जो कॉलर असा गड हों काफ़ी दोस्त जो कॉलू अचन पे सभी खुश आमदी चौं था प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम
0: मुझे केर सा पे गल
1: जी
0: मुझे भा छा पुछंदा डॉक्टर साहब का अच्छा डाठ में सूर पे बुध एफ एम बुध डॉक्टर साहब वहाँ बुधाई जी सर
2: जी तकलीफ़ ज़्यादा है तो करीबी डॉक्टर के दिखारे सको वरना रूबरू दिखारे वो तो बेहतर रहो या लौंग जो तेल वहाँ के मिली वे तो वो देखो अस लगे सोता उन काफ़ी फ़र्क पव या घर में मिठी सोडा होंगी है वह लगे इनशाला उन काफ़ी
0: कॉलर लाइन से मौजूद है अस्सलाम वालेकुम
1: सर
0: साहब जो गल है
1: सर साहब जो
0: गल है सर साहब साहब यो छा पुछने डॉक्टर साहब का
1: सर जिस्म में कमजोरी भी रहे डाडी
0: भाई अच्छा जिस्म में कमजोरी इने मसले ले फोन करी इलाज मौजूद आलो डॉक्टर वट को मसलो ही कोने को एफएम बुद डॉक्टर बुदाइंदी जी सर को दे एफएम बुद
2: सेम बिल्कुल रूबरू हो जे इंशाल्लाह ताला उनकी ट्रीटमेंट है
0: तो वहां है से जी गाल जी मेरा पर एफएम 94 जो आवाज सवा जे समात में पहुंचे पियो 0301 96 8051 एक बियो कॉलर लाइन पे मौजूद जिसो के थाजो कॉलर कर हुंदो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम साईं मुझे केर साहब पियो गलाए ए
1: वकार अली बुड़दी पियो गलाए
0: खुश आमदी चों था बुड़दी साहब के छा पुछंदा डॉक्टर साहब का मुझे भा
1: जी सही जो वार छणी दांजन सही
0: वार छणी दांजन दिमाग की कमजोरी हो
1: जी सही
0: ठीक है घणियो मेरा
1: सही तकरीबन 15 साल
0: अच्छा को मसलो ही कोने को बुधे फेम बुधो डॉक्टर साहब वहाँ के बुधाइंदो
2: जी प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है अदे के चंदा सी रूबरू देखन वरना सत बादाम रोजाना रात जो पानी में पैसा रखन सुबह जो नेरा ने खाएं इंशाल्लाह ताला काफी फर्क पड़े
0: थी वक्त है कमर्शियल ब्रेक जो पेरियालो था कमर्शियल ब्रेक की तरह
3: हेलो वरना खबर ना है मैं हर वक्त तेरी थकेला थकेला शो हूं दिया आया
4: तू खाइंदी चाहे स्कूल में बाकी बारन जी मंझन जी मानी डिठिया है सोच

0: लड़के ने तताओ ने के रोज अंडा खारा जो मंझन जी मानी में सूफे दी जो तजियो स्कूल में मुआगुर थकेला थकेला ना हो जे।
1: बारन में कमजोरी अक्सर जरूरी गिजाई जुजन जी घटताई हुंदी आहे जेका उनन जे सिखण जी सलाहियत में रंडक बणजे थी। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
2: सॼो ॾींहुं ॾिसां थी तोखे परेशान घुमंदी रही आं। पहिरियों भेरो मां थी रही आहीं न, मुंहिंजो बि इहो ई हाल हो।
3: ख़बर नाहे तव्हां ई सभु कुझु कीअं कयो नानी, मां त एतिरो थकी

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्लाह चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन दिन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूँगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
5: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे, मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
6: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 0307359210।

0: कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफ़ो बीहर सभी के खुश आमदी चुं था प्रोग्राम से अज की गाल जी मेहरापुर FM 94 तां लाइव पेश कयो पयो वने अहांजो पंहिंजो मेज़बान डॉक्टर हाकिम अली जिस्कानी असां गॾु आहे अहांखे ॿुधाईंदा हलूं त असांजे स्टूडियो में मौजूदु प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिबु डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि हिकु मुल्की सतह जो वॾो डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु जेको होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन आहे डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटी कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि फैमिली फिज़िशियन डॉक्टर आहिनि गुर्दे पिते मसाने जी पथरी जो बिल्कुलु बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कनि था जंहिंखे बि पिते जी पथरी आहे गुर्दे जी पथरी आहे मसाने जी पथरी आहे इनशाला डॉक्टर साहिबु इलाजु कंदो अलाह ताला जे हुकुम सां निकिरी वेंदी ॿियूं जेके बीमारियूं आहिनि उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि 0301-9196-8151 हिकु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे ॾिसूं किथां जो कॉलर हूंदो अस्सलाम वालेकुम
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम केरु पियो ॻाल्हायां था
1: साईं खादम हुसैन ॻोठ कैमदीन कुबर खां साईं मलो निकितो आहे लड़ीअ खे
0: जी दादा
1: साईं हिन उहो इलाज त करायो पर फ़िलहालु उहो छॾे कोन थो वञा
0: छॾे नथो वञा हलो डॉक्टर साहिबु वटि कोन आहे न डॉक्टर मंज़ूर साहिबु वटि अचो न वठी छो न वेंदो आहे मुकमल छॾे वञे पोइ मात कढो अधु छॾींदी दवा वठी आया हूंदो थोरो फ़र्क़ु थी हूंदो तव्हां दवा बंदि करे छॾी हूंदी ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाइजो जी सर महिरबानी
2: बिल्कुलु सही पिया चओ साईं बिल्कुलु ईअं ई थींदो आहे असां हालांकि पेशंट्स खे चवंदा आहियूं त बाबा हीअ हिकु दफ़ो दवा ॾिनी आहे हीअ का अंग्रेज़ी दवा न आहे जो तव्हांखे जेको आहे सो फ़िलहालु छॾे वञे वरी पई थिए हिन खे जेकॾहिं तव्हां मुकमल तरीक़े सां इस्तेमालु कंदव त तव्हांजी तकलीफ़ मां जल्द छुटी वेंदी आहे अॼु बि हिकिड़ो ताज़ा मिसाल आहे त हिकिड़ो पेशंट हुयो जेको 1.5 साल खां बाद में मूं वटि आयो नंढी खे वठी आयो अलहमदिल्ला हिकिड़ी शिफ़ा जी ॻाल्हि आहे त हुनखे त जेको आहे सो हिकिड़ी चकर सां फ़र्क़ु जो पइजी वियो त उहो वीचारो मज़दूरी कंदो आहे कराची वेंदो आहे पर नंढड़ी खे वरी अॼु वठी आयो त हुनखे हाणे एतिरे टाइम खां बाद में वरी मथे में जेको आहे सो मलो सो बहरहाल चवण जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त अहिड़े क़िस्म जी जेकी पेशंट कहिड़ो बि हुजे उनखे तकरीबन जेको असां चवंदा आहियूं त 2-3 महीना मुकमल कोर्स करायो त उनजो मक़सदु इहो ई हूंदो आहे त फ़िलहालु 10 ॾींहनि जी दवा ॾींदा आहियूं त हुनखे मुकमल तरीक़े सां ॿियो न त घटि में घटि एटलीस्ट 1 महीनो दवा कंटिन्यू हलाए त उनखे काफ़ी जेको आहे सो
0: फ़र्क़ु
2: छो जो हीअ सिर्फ़ु चमड़ी में ॿाहिरि न हूंदी आहे रत जो बिगाड़ हूंदो आहे रत में अंदरि सफ़ाई करणी हूंदी आहे त उनजी दवा मुकमल जॾहिं हलंदी तॾहिं ई फ़र्क़ु थींदो आहे जी साईं
0: हिकु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे कॉल जी तरफ़ ईंदासीं अस्सलाम अलैकुम पंहिंजो मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी सां गॾु आहे तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं दोस्तनि जंहिंमें छा असीं गुज़ारिश कंदा आहियूं जॾहिं बि तव्हां कॉल करियो त रेडियो सेट खे बंदि रखो जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो आवाज़ु पाण ॿुधणु चाहींदो त पोइ तव्हांजो आवाज़ु असां वटि त कोन ईंदो मजबूरी असांखे या कॉल ड्रॉप करणी पवंदी या ख़ुदि ई कटिजी वेंदी कॉल जी तरफ़ ईंदासीं ॾिसूं हीउ कॉलर किथां जो असां सां गॾु हूंदो अस्सलाम वालेकुम
1: साईं
0: मुंहिंजा केरु छा पियो ॻाल्हाए हा जी छा पुछणु चाहींदा
1: दादा
2: जॾहिं रग ब्लॉक थी वेंदी आहे त पोइ इन जे करे ई जेको आहे प्रॉब्लम थींदो आहे उन जे लाइ बहितरीन दवाऊं होम्योपैथिक में मौजूदु आहिनि ऐं मुकमल कोर्स मौजूदु आहे फस्ट एड तौर ते त तव्हां का बि मालिश कंदव ऐं उनमें ऐं घणा दोस्त मां मालिश जे लाइ बि हालांकि मना कंदो आहियां घणा मालिश कंदा आहिनि सो हाणे बि काफ़ी पेशंट्स आहिनि त असां मालिश कईसीं उन में वधीक सोज वधी वई ऐं वधीक तकलीफ़ वधी आहे हालांकि असां बार बार चवंदा आहियूं त इनखे मालिश न आहे करणी वधि में वधि असां ॾिसल हिकिड़ो जीअं कुदरती तौर ते असां तेल ॿुधाईंदा आहियूं त सरहं जो तेल आहे उनखे गरम करे उनमें हेठि विझी ऐं उहो तव्हां सिर्फ़ु अप्लाई कयो यानी अप्लाई करण जो मक़सदु इहो सिर्फ़ु तव्हां लॻाए छॾियो जॾहिं हू अंदरि चमड़ी में जज़्ब थी वेंदो त रगुनि में ऐं हलनि में पाण ई उहो पंहिंजी ताक़त रखंदो त उन सां ख़ुदि बि अज़ ख़ुदि जेको आहे सो तव्हांखे रिलीफ मिली वेंदो आहे। पर उहो बि ॾिसो फर्स्ट एड तौर ते यानी आरज़ी तौर ते फ़िलहालु तव्हांजी तकलीफ़ खे घटाए सघे थो, लेकिन मुकमल ट्रीटमेंट जे लाइ मुकमल दवा होम्योपैथिक में तव्हां इस्तेमालु कंदो तॾहिं तव्हांखे फ़ाइदो पवंदो।
0: ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जी तरफ़ ईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर, मुंहिंजी अमा घुराई आहे, हुनजी उमिरि 70 साल थी वई।
0: जी जी। मुंहिंजे
1: मोशन थियनि ॾाढा।
0: अच्छा, मोशन नथा बीहनि छा?
1: न सर, ही मां ब्लड प्रेशर हाई थो रहे।
0: अच्छा, ब्लड प्रेशर हाई थो रहे, त ही असुल चाहे त मर एजड आहे, बहितर आहे त रूबरू ॾेखारे वञो वधीक बहितर आहे। बाक़ी असां ॿुधो था तव्हांखे ॿुधाईंदो। जी
2: जी साईं, बिल्कुलु मूंखे बि इहो ई ॾिसंदासीं त जेको आहे सो बिल्कुलु हिकु त चांहि ऐं खीर ऐं मानी हुनजी बिल्कुलु बंदि करणी आहे। सिर्फ़ु खिचड़ी इस्तेमालु करणी आहे, केलो इस्तेमालु करिणो आहे, केले में स्पंगुर जी दुही विझी उहा इस्तेमालु करणी आहे, जीरो अवां उनखे फकराए सघो था चमची खनि, उन खां पोइ हर खाधे खां पोइ सौंफ़ चूसराए उन सां बि काफ़ी अफ़ाको अची वेंदो आहे, वरना दवा मौजूदु हूंदी आहे। जेकॾहिं फ़र्क़ु पइजी वञे थो हिन अमल सां ठीकु आहे, वरना उहो बुरो ॾेखारे सघूं, लेकिन परहेज़ बि मस्ट आहे, यानी चांहि खीर वग़ैरह तव्हांखे मुकमल बंदि करिणो आहे। ओके,
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, ॾिसो किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम। उहो साईं ॻाल्हायो। हलो,
1: हा सर।
0: जी मुंहिंजा साईं,
1: सर डॉक्टर साहिब खां इहो पुछंदासीं त माना जेको मथे में सूरु माण्हू खे पवंदो आहे,
0: जी जी दादा,
1: त इहो माण्हू जेको मथो बधंदा आहिनि त इहो सही आहे या न? माना हिकिड़ो माण्हू मथे खे कपिड़ो के बधंदा आहिनि, इहो सही आहे या ग़लति आहे?
2: सर, हिकिड़ो जेको आहे सो ज़ाहिर कंहिंखे जेकॾहिं शिदत घणी थींदी आहे, ख़ासि करे मर्द त मथो कोन ॿधंदा आहिनि, मथो त वरी बि औरतूं ई ॿधंदियूं आहिनि, ऐं उहो ईअं बि घर में ॿधंदियूं आहिनि, ऐं मथो ॿधणु हिकिड़ो हैबिट आहे, लेकिन मथे ॿधण सां को सूर सां को तालुक़ु न आहे, उन सां को सूर झको न थींदो आहे। वक़्ती तौर ते सिर्फ़ु हिकिड़े क़िस्म जी केरु माण्हू जीअं ज़ोर ॾियारे या जेको आहे सो इनहेलेशन कराए त उहा ई थींदी आहे, लेकिन हिन सां को मथे खे को ॿधणु को इलाजु न आहे। जी साईं,
3: वालेकुम सलाम, केरु था ॻाल्हायो था?
2: मिठी सोडा उहो इस्तेमालु करे सघे थो, लौंग जो तेल इस्तेमालु करे सघे थो, या फिर रूबरू ॾेखारे वञनि त उहो वधीक बहितर।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी, मेरा पर एफ एम 94 जो आवाज़ तव्हांजे समात में पहुचे पियो। असांजे स्टूडियो में मौजूदु सिंध जो मशहूरु मरूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिब बि कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे। ॾिसो किथां जो कॉलर असां सां ॻाल्हाए रहियो।
3: वालेकुम अस्सलाम जी दादा। जी जी दादा,
1: जी
0: जी, छा पुछंदा डॉक्टर साहिब खां?
1: मूं चए घर वारी असां ॾाढियूं करायूं आहिनि राणीपुर मुंहिंजे सोलंकी साहिब

0: अॼु साईं बिल्कुलु देखियो असांजी तरफ़ां बि इहो ई ॾस आहे त रूबरू ॾेखारनि त पोइ जेको आहे सो ख़बर पइजी सघे।
1: सिंध मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमून साहब असांजे स्टूडियो में मौजूदु। डॉक्टर साहबु, हर अरबा ख़मीस जुमो छंछरु आचरु सूमरु अङेरो अरबा ऐं ख़मीस, हर अरबा ख़मीस जुमो छंछरु आचरु ऐं सूमरु ते सुबुह ॾहें खां शाम पंजे वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक साम्हूं वधण पुटा पेट्रोल पंप कोठड़ी कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, ॾिसो किथां जो कॉलर असां सां गॾु हूंदो। 0301-9196-8 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे।
2: अस्सलाम वालेकुम दादा। हेलो हेलो
1: दोस्ती काल ड्रॉप थी चुकी आहे। ड्रामा हे सेहत जी ॻाल्हि जी मेरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजे समाज में पहुचे पियो। उन्हनि जो पंहिंजो मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी असां गॾु आहे। 0301-9196-8 जो नंबर। सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमून साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु, जेको मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॼाण ॾेई रहियो आहे। हीअ कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, ॾिसो किथां जो कॉलर गॾु हूंदो। वालेकुम अस्सलाम, केरु साहिबु पियो ॻाल्हाए? मुंहिंजा साईं ख़ुश आमदी चवंदा भाउ खे। रेडियो सेट खे बंदि कयो, छा पुछंदा भाउ मुंहिंजा डॉक्टर साहिब खां? अलाह अकबर, पिननि में माना जेके जंगुनि जूं पिया जूं पिनियूं हूंदियूं आहिनि पिननि में सूर रहे थो। चकर बि अचनि था।
3: उमिरि घणी आहे?
1: अच्छा, उहा बि इस्तेमालु कयो, विटामिन जी कमी हूंदी, असुल इहो चकर थींदो आहे। बराबरि ॿुधो, एतिरो ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो या वरी रूबरू ॾेखारे वञो।
0: बिल्कुलु, हिनखे असां ऐसा बि कमज़ोरी बि सूरत में चवंदा आहियूं, या पठा कमज़ोर थी वेंदा आहिनि, जंहिंजे करे पोइ उनमें नर्व्स जी वीकनेस थी वेंदी आहे, जंहिंजे करे अॼु खे इहो ई चवंदासीं त हिकु त खीर जो इस्तेमालु तमामु ज़रूरी आहे। रोज़ाना राति जो खीर जे हिकिड़े गिलास में 7 दाणा खजूर जा ककड़ी कढी करे विझी उहो जूस करे उहो पीअण, उनमें जेकॾहिं माखी बि मौजूदु आहे हिकिड़ो चमचो माखी जो विझी, त इनशा ताला हफ़्तो पीअण सां उनजी सारी शिकायत ख़तमु थींदी। महीने पीअण सां बिल्कुलु तंदुरुस्तु तवाना थी वेंदो। वॾी महिरबानी।
1: ख़ुदा महेश सेहत जी ॻाल्हि जी मेरापुर FM 94 जो आवाज़ कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे।
2: अस्सलाम वालेकुम, केरु था, किथां था ॻाल्हायो? जी दा, छा पुछंदो डॉक्टर साहिब खां?
0: पाणी जो इस्तेमालु ज़्यादा करे, खीर जो इस्तेमालु तमामु ज़रूरी आहे, ऐं रोज़ाना राति जो जेको आहे सो सौंफ पाणी में पिसाए रखे, सुबुह जो नेराणे उनखे काढ़े उनजो पाणी पीअनि, इनशा ताला कब्ज़ में काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो। जेकॾहिं कब्ज़ आहे त चांवर जो इस्तेमालु बिल्कुलु बंदि करे छॾियो, ऐं इनशा ताला काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो। फल फ्रूट इस्तेमालु कनि, वाक जो इस्तेमालु तमामु ज़रूरी आहे। ॿी नंबर में ज़रूरी ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त असां ग़लती इहा कंदा आहियूं त कॾहिं कॾहिं दिमाग़ जी तरफ़ खां जॾहिं मैसेज ईंदो आहे त अव्हांखे पाखाने जो ख़्यालु थियो आहे, यानी हाजत जो ख़्यालु थींदो आहे, त असां कंहिं मसरूफ़ जे करे उनखे डिले करे छॾंदा आहियूं, जेको इता ई ग़लति आहे, ऐं उन डिले करण जे करे उहो ख़्यालु मटिजी वेंदो आहे, ऐं पोइ जेको असांखे कब्ज़ जी शिकायत रहंदी आहे। इनजे करे उनजे करे उहा शिकायत ख़तमु करण जे लाइ अव्हांखे जंहिं महिल बि अहिड़ी हाजत महसूसु थिए त पहिरियां जेको आहे सो उहो कमु कंदा कयो। वॾी महिरबानी।
1: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जी मेरापुर FM 94 जो आवाज़ कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। मसले जो हल बि थिए, हुतां हुतां दवा वठंदा हिन जो को हाल न आहे। डॉक्टर साहिब खे रूबरू अची ॾेखारे वञ, ॾिस महीनो थी वियो आहे हुनखे मोशन थो, हिन महिल पुराणो बुख़ार थी चुको आहे, हॾनि जो बुख़ार में, ईअं सम्झ हॾनि में बुख़ार रहिजी वियो आहे, डॉक्टर साहब जी जी
3: मोशन घणा थई साईं
1: हां मोशन बिल्कुल घणा हुंदा इन में थिंदो आ यो बुद एफ एम दो डॉक्टर साहब आके बुदाइनो या रूबरू देखारे वनी बा ठीक है
0: बिल्कुल देखे ई जदा से एकड़ो महीनो थियो इन में पेशेंट एड़े पेशेंट के ज्यादा डिले कर सा डिहाइड्रेशन जी कमी थी विंदी है यानी नमकिया ते पानी जी कमी थी विंदी है पो उन पेशेंट के जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट थी उन अगत हली तमाम

0: घणी कॉम्प्लिकेशन में अची सघे थो इन जे करे बहितर आहे त उनखे रूबरू ॾेखारे दवा वठी वञे वरिती वञे वरी महिरबानी
1: प्रोग्राम है सेहत की ॻाल्हि जी में आपर एफ एम 94 जो आवाज़ तव्हांजे समातुनि में पहुचे पियो डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं अस्पताल नवाब शाह डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमो छंछर आचर सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोरड़ी कबीर रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि उहा पित जी पथरी आहे गुर्दे जी पथरी आहे मसाले जी पथरी आहे नक जी हॾी वधियल आहे गले जा गुदूद वधियल आहिनि उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहब बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कनि था इन खां अलावा संदनि जोड़नि जो सूरु आहे गोॾनि जो सूरु आहे अव्हांखे कुंजरग जो सूरु आहे पुराणो नज़लो आहे निछूं आहिनि मथे जो सूरु आहे अधु मथे जो सूरु आहे नज़र जी कमज़ोरी आहे कन में सूरु आहे तव्हांजो कन वहे थो घटि ॿुधो था शुगर आहे ब्लड प्रेशर आहे दिलि जा मर्ज़ आहिनि बवासीर आहिनि खंघि आहे टीबी आहे मादे जो सूरु आहे मादे जी अल्सर आहे अव्हां खाओ पियो था तव्हांखे खाधो बिल्कुलु नथो वणे कॾहिं कॾहिं अव्हांखे उल्टी अचे थी या तिरी अव्हांजी वधी वञे थी जिगर आहे हेपाटाइटिस बी आहे सी आहे गुर्दनि जो अव्हांखे इन्फेक्शन आहे गुर्दनि में चहिरे जो रंग अव्हांजो सांवरो थी वियो आहे ख़ारिश आहे ख़ारिश जी कहिड़ी बि बीमारी हुजे एलर्जी हुजे फट हुजनि फुरड़ियूं हुजनि ॿारनि जो कदु नथो वधे पियो ॿार सफ़ा कमज़ोर थी विया आहिनि औरतुनि जो वज़न नथो वधे या जेके औरतूं जिन जो वज़न वधी वियो आहे उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहब कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब 30 साल तजुर्बो रखंदड़ हिकु मशहूरु डॉक्टर आहे जंहिं वटि अलहमदिल्ला हज़ारे मरीज़ हिन वक़्त ताईं सिहतयाब थी चुका आहिनि मिसाल कंहिंखे अधरंगो आहे अवां बिना जजक जे डॉक्टर साहब वटि हलिया अचो कंस्टिपेशन आहे अवां बिना जजक हलिया अचो पुराणे खां पुराणो बुखार आहे डॉक्टर साहब वटि हलिया अचो कॾहिं बि डॉक्टर साहबु पंहिंजो नंबर बंदि नाहे कयो कॾहिं बि कंहिं मरीज़ खे जवाबु नाहे ॾिनो अलहमदिल्ला डॉक्टर साहबु जीअं इलाजु कंदो आहे अलाह सांजी ज़ात उनखे शिफ़ा ॾींदी आहे हिकिड़ी हथु शिफ़ा थींदी आहे ऐं दोस्तनि खे इहो ई गुज़ारिश कंदो आहे जिते जिते मुंहिंजो इहो आवाज़ु पहुचंदो आहे उन्हनि खे इहो चवंदो आहे भई हिनजो डॉक्टर साहबु वटि जेको हिकु दफ़ो ईंदो ऐं अलहमदिल्ला डॉक्टर साहब खां ई इलाजु पियो कराईंदो कॉल जी तरफ़ ईंदासीं हे कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे ॾिसो किथां जो कॉलर हूंदो अस्सलाम वालेकुम साईं मुंहिंजा केरु साहिबु पियो ॻाल्हाए जी दादा छा पुछंदो आहे डॉक्टर साहिब खां डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो जी सर
0: जी सर बिल्कुलु कंहिं महिल जी मां सौंफ जो काढ़ो ॿुधाईंदो त सौंफ जो काढ़ो अक्सीर
1: जी ॻाल्हि एम 94 जो आवाज़ु तव्हांजे समातुनि में पहुचे पियो डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं अस्पताल नवाब शाह सिंध जो मुंहिंजे स्टूडियो में मौजूदु ऐं तमामु महिनत कई डॉक्टर आहे अलाह सां हुनजे हथ में हिकिड़ी शिफ़ा रखी आहे छो जो हिकिड़ो ज़रियो बणबो आहे डॉक्टर साहब कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे कॉल तरफ़ ईंदासीं अस्सलाम वालेकुम सलाम केरु साहिबु पियो ॻाल्हाए मुंहिंजा साईं हा भली कार चवंदा भाउ खे छा पुछंदा भाउ डॉक्टर साहिब हा अच्छा माना कुख में सूर बि रहे थो गोॾनि में सूरु आहे तुंहिंजे जोड़नि में सूरु आहे पोइ डपैया डॉक्टर साहिब खे रूबरू बि न ॾेखारियो अथई मुंहिंजा मिठा भाउ डॉक्टर साहिबु रोज़ु कलाकु टाइम कढी असांजे स्टूडियो में अच्छा नंबर रजिस्टर कयो अथव डॉक्टर साहिब जो हलो माशाला एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिब तव्हांखे ॿुधाईंदो जी साईं
0: जी साईं बिल्कुलु जेके इहे चवंदासीं त मल्टीपल प्रॉब्लम्स आहिनि हिन जे लाइ रूबरू ॾेखारींदो त वधीक बहितर
1: डॉक्टर साहिब तव्हांजो महिरबानी आहिनि तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु न आहियो आख़िर में कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा असांजे मौज़ूदु ॿुधंदड़नि खे
0: वॾी महिरबानी एक्चुअली पछाड़ी में इहो ई आहे त हिकु त सदिको ज़रूरु ॾींदा कयो ऐं उनखां पोइ जेके बीमार आहिनि इस्पतालुनि में उनजे लाइ दुआ ज़रूरु कंदा कयो त अलाह ताला उन्हनि खे सिहतयाबी ॾिए ऐं जेके बे औलाद हज़रात आहिनि
1: अलाह स्टूडियो में मौजूदु हो इस्लामाबाद कराची नवाब शाह हैदराबाद जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु हुनजो पूरे पाक मुल्की सतह जो डॉक्टर आहे डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन गुर्दे पिते मसाने जी पथरी जो वग़ैरह गोॾनि जो सूरु नक कनो निछूं मथे जो सूरु अधु मथे जो सूरु नज़र जी कमज़ोरी जो सूरु घटि ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ अधरंगो खंघि टीबी मादे जो बी सी गुर्दनि जो इन्फेक्शन चहिरे जो रंग सांवरो आहे चहिरे जी ख़ारिश आहे फट आहिनि फुरड़ियूं आहिनि ॿारनि में कद जो न वधणु औरतुनि में वज़न जो न वधणु औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि डॉक्टर साहबु हर अरबा खमीस जुमो छंछरु आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर

शहर में मरीजनि जो इलाज कंदा आहिनि। डॉक्टर साहब हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर चेकअप फीस जी, यानी चेकअप जेका फीस आहे उहा डॉक्टर साहब जी इहा टे ॾींहं बिल्कुलु फ्री आहे, बिल्कुलु मुफ़्त आहे। जेके ग़रीब आहिनि असीं उन्हनि खे गुज़ारिश कंदा आहियूं तव्हां उन मां इहो फ़ाइदो हासिलु करियो, तव्हांजी जेका चेकअप फीस आहे उहा बची पवंदी। इन ते अॼु प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। असीं हिकु दफ़ो ॿीहर ज़रूरु चवंदासीं, जीव ख़ुशि त जहान ख़ुशि, जीव आहे सभु को हिकिड़ो तव्हांखे ठीकु लॻंदो, बीठे जो सभु को ऐं किरे जो केरु बि न आहे। तंहिं करे पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजे घर वारनि जो, पंहिंजे औलाद जो, पंहिंजे ॿारनि जो, पंहिंजे बचनि जो, नंढनि वॾनि सभिनी जो, पंहिंजे वालदेन जे सिहत जो बे इंतिहा ख़्यालु रखो। इन ते अॼु प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। ॿिए प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान हाकिम अली जिस्काणी खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान, अलाह वाहिद।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमन ए इस्तेकाम लाए पाक फौज के किरदार जी सारा वतन के दिफा में हयाती कुर्बान कर बहादुर जवानन के भेटा भी पेश कई वही। बलोचिस्तान में जटादार अमन लाए अवाम दोस्त पॉलिसी ए बेहतर हुक्मरानी तरक्की रोकण जी ताईं नाकाम थींदा। कोयटा में फौजी ऑफिसरन के खिताब कंदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त हथियारबंद फौज हर किस्म जी दहशतगर्दी जे खात्मे लाइ पुरअज़म आहे। पाक फौज अवाम जी हिमायत सां दहशतगर्दी जे खात्मे लाइ पुरअज़म आहे। पाकिस्तान जी तरक्की खे प्रोपेगेंडा या परडे॒ही सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी ज़रिए रोके नथो सघिजे। जदीद जंगी तरीक़ेकार तेज़ी सां तब्दील थी रहियो आहे। फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी मल्टी डोमेन ऑपरेशन ऐं टिन्ही फौजनि में गडि॒यल सहकार ते ज़ोर भरियो।
2: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: खुशखबरी हाणी अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8-5-69।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: भारत पाकिस्तान की मुखलिस संजीदा गाल वरी आछ के नजरअंदाज कर छिकतान अग्राई तशद्दुद जो रस्तो अख्तियार कयो। हक की जंग में पाक फौज दुश्मन के मुंह तोड़ न विसरंदड़ सबक सेखारियो। हाने दुश्मन कदें भी पाकिस्तान डां बुरी नजर से दिसण की हिम्मत न कंदो। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज की फैकल्टी ए तरबियत हेठ ऑफिसर के खिताब। शहबाज शरीफ चयो तो पान के ताकतवर समझंदड़ दुश्मन के जंग का पोए सफारदी मैदान में भी नाकामी नसीब थी ए पाकिस्तान जो मौकिफ दुरुस्त साबित थो। दुनिया भारत के कूड़े बयानी के रद्द कर पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में अमेरिका ए ईरान विच में जंग बंदी थी।

0: सिंध में पाणी जी शदीद कोट बावजूद पंजाब तरफा जबरदस्ती खोलियल गैर कानूनी लिंक कैनाल जरिए पाणी खणत जारी। सिंध जा चूंडियल नुमाइंदन आबपाशी खाते मामले ते खामोशी इख्तियार करे वरती। जरिए मुझे पंजाब सी जी लिंक कैनाल जरिए 10,000 क्यूसिक टीपी लिंक कैनाल जरिए 8,122 क्यूसिक पानी गुजर 4 दिन का रोजानी बुनियाद ते खणी रो है। सिंध में पानी की संकट बावजूद इरसा में मौजूद सिंध के नुमाइंदन आबपाशी खाते कें भी किस्म जो एहतजाज न कयो।
1: सिंध असेंबली सरकारी नौकरियों लाए उम्र की हद में 15 साल रियायत देने वालों ठहराव रद्द कर छोड़ो। एमक्यूएम के शबीर कुरेशी पारा पेश कल ठहराव की हुकूमत मुखालफत कई। घरू वजीर ज़ियाल अजार सुप्रीम कोर्ट 15 साल

0: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ये जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का।
2: बाबा ये वाला बकरा।
3: बेटा आज से बेटा अभी पैसे नहीं है।
4: रास्त
5: सर जी, अभी पैसे नहीं तो परेशानी की क्या बात, पेमेंट करें बराहे रास्त
6: अपने मोबाइल पे बैंक की ऐप या किसी भी पेमेंट ऐप पर जाकर QR कोड।
7: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
8: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
9: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर शाम 5 बजे ताई मरीजन जो इलाज दवा स्टोर ता वठनी पौंदी। नक कन जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट में अचान शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वदन मर्दन औरतन में वजन जो न वदन उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
10: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-1800-003।
11: अस्सलाम वालेकुम अदा।
12: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
11: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
12: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
11: न अदा।
13: यार आज कल शरण तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
11: मुझे दुकान जी बेड हरंदी।
12: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
11: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
13: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
12: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
14: 0301-399-2836
13: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1565-724। मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
15: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
13: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
15: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
10: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन

मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-003-8-5-69।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: एलोवेरा फैन
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीएल एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
5: होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003।
6: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।

0: नसीब थी आहे ऐं पाकिस्तान जे मौक़िफ़ खे दुनिया तस्लीम कयो। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम जे हक़नि जे लाॻीतो वकालत कई आहे। वालारल कश्मीर वासियुनि जी इख़लाक़ी, सियासी ऐं सफ़ारती हिमायत जारी रखंदासीं। अफ़गान तालिबान रजीम खे दहशतगर्द टोलनि ख़िलाफ़ असराइता क़दम खणणा पवंदा।
1: बलोचिस्तान में जटादार अमन लाइ अवाम दोस्त पॉलिसी ऐं बहितर पाणी अंटर आहे। पाकिस्तान जी तरक़ी रोकण जी कोशिश कंदड़ सदाई नाकाम थींदा। क्वेटा में फ़ौजी आफिसरनि खे ख़िताब कंदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त हथियारबंद फ़ौज हर क़िस्म जी दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। पाक फ़ौज अवाम जी हिमायत सां दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। पाकिस्तान जी तरक़ी खे प्रोपेगेंडा या परॾेही सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दीअ ज़रिए रोके नथो सघिजे। जदीद जंगी तरीक़ेकार तेज़ीअ सां तब्दील थी रहियो आहे। फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन्स ऐं टिन्ही फ़ौजनि में गॾियल सहकार ते ज़ोर भरियो।
0: ईरान ते ॿीहर हमलनि जी ज़रूरत पइजी सघे थी। ईरानी क़यादत डील लाइ मिंथूं करे रही आहे। डील न थी त हमलनि खां सवाइ ॿियो को रस्तो न बचंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान खे नवां एटमी हथियार ठाहिण लाइ वक़्तु नथा ॾेई सघूं। ईरान वटि अञा बि जवाबी कार्रवाई जी थोरी सलाहियत मौजूदु आहे। ईरान आबनाए हुर्मुज़ खे 47 वरनि खां अस्करी क़ौम तौरु इस्तेमालु करे रहियो आहे। अहिड़ी सूरत हाल खे वधीक बर्दाश्त नथो करे सघिजे।

0: अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जो मक़सदु हथियार फिटा करणु आहे। ईरान जे मफ़ादनि, इज़त ऐं वक़ार जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त तेहरान कंहिं बि सूरत में ईरान ऐं ईरानी अवाम जे हक़नि तां हथ न खणंदो। समूरी तवानाई सां गॾु ईरानी अवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं। ईरानी ख़ातम लंबिया ब्रिगेड चयो आहे त ईरानी फ़ौज जो हथ बि ट्रिगर ते आहे। हमिलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। तकड़ी फैसलाइती ताक़तवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी।
1: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो कतरी हमनसब सां फ़ोन ते राब्तो, ॿिनि तरफ़नि लाॻापन ऐं विच ओभर जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। ॿिन्ही अॻवाननि जो ख़िते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखण ते ज़ोर। शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान ख़िते में जटादार अमन जी क़याम लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखंदो।
0: सिंध में पाणी जी शदीद कोट बावजूद पंजाब तरफ़ां गैर कानूनी लिंक कैनाल ज़रिए पाणी खणण जारी। सिंध जा चूंडियल नुमाइंदा ऐं आपाशी खाते मामले ते ख़ामोशी इख़्तियार करे वरिती। ज़रियनि मूजिबि पंजाब सी जी लिंक कैनाल ज़रिए 10,000 क्यूसिक ऐं टी पी लिंक कैनाल ज़रिए 8,122 क्यूसिक पाणी गुज़िरियल 4 ॾींहनि खां रोज़ानी बुनियादनि ते खणी रहियो आहे। सिंध में पाणी जी सख़्त कोट बावजूद हिसा में मौजूद सिंध जे नुमाइंदनि ऐं आपाशी खाते कंहिं बि क़िस्म जो एहतजाज न कयो।
1: सिंध असेंबली सरकारी नौकरियुनि लाइ उमिरि जी हद में 15 साल रियायत ॾियण वारो ठहराउ रद्द करे छॾियो। एम क्यू एम जे शबीर कुरेशीअ पारां पेश कयल ठहराउ जी हुकूमत मुखालफ़त कई। घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार चयो त सुप्रीम कोर्ट 15 सालनि वारी उमिरि जी रियायत ख़तमु करे छॾी आहे, रुगो 5 साल रियायत ॾेई सघिजे थी। अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जा पाबंद आहियूं। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो त पीपुल्स बस सर्विस बि समूरी सिंध में हलाई वेंदी। कराचीअ जी बहितरीअ ते बि ध्यानु आहे।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राबते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32-04-372-0242-46-0100।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशर्ट्स बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राबते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-35-92-120।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-283
6: मोहम्मद उमर 15524।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
9: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
10: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए।

0: मंसूर अहमद मेमण 0301-380-83-47।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जो मक़सदु हथियार पिटा करणु आहे। ईरान जे मफ़ादनि इज़त ऐं वक़ार जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पेशिकियान चयो आहे त तेहरान कंहिं बि सूरत में ईरान ऐं ईरानी अवाम जे हक़नि तां हथ न खणंदो। समूरी तवानाई सां गॾु ईरानी अवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं। ईरानी ख़ातम लंबिया ब्रिगेड चयो आहे त ईरानी फ़ौज जो हथ बि टिगर ते आहे। हमिलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। तकड़ी फैसलाती ताक़तवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी।
1: सिंध में पाणीअ जी शदीद खोट बावजूद पंजाब तरफ़ां गैर क़ानूनी लिंक कैनाल ज़रिए पाणी खणण त जारी। सिंध जा चूंडियल नुमाइंदा ऐं आपाशी खाते मामले ते ख़ामोशी अख़्तियार करे वरिती। ज़रियनि मूजिबि पंजाब सी जे लिंक कैनाल ज़रिए 10,000 क्यूसिक ऐं टी पी लिंक कैनाल ज़रिए 8,122 क्यूसिक पाणी गुज़िरियल 4 ॾींहनि खां रोज़ाने बुनियादनि ते खणी रहियो आहे। सिंध में पाणीअ जी सख़्त खोट बावजूदु इरसा में मौजूदु सिंध जे नुमाइंदनि ऐं आपाशी खाते कंहिं बि क़िस्म जो एहतजाज न कयो।
0: सिंधी असेंबली सरकारी नौकरियुनि लाइ उमिरि जी हद में 15 साल रियायत ॾियण वारो ठहराउ रद्द करे छॾियो। एम के एम जे शबीर कुरेशी पारां पेश कयल ठहराउ जी हुकूमत मुखालफ़त कई। घरू वज़ीर जलाल सरंजार चयो त सुप्रीम कोर्ट 15 सालनि वारी उमिरि जी रियायत ख़तम करे छॾी आहे। रुगो 5 साल रियायत ॾेई सघिजे थी। अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जा पाबंद आहियूं। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमण चयो आहे त पीपल्स बस सर्विस बि समूरे सिंध में हलाई वेंदी। कराची जी बहितरी ते बि ध्यानु आहे।
1: सिक्योरिटी फोर्सिस जो उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। 22 भारतीय हामी ख़ारिजी दहशतगर्द मारिजी विया। SPR मूजिबि उत्तर वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े शेवा में सैनिटाइज़ेशन ऑपरेशन दौरान ख़ारिजियुनि जे थाकनि खे असराइते अंदाज़ में निशानो बणायो वियो। फायरिंग जी ॾे वठि में भारतीय हामी 22 ख़ारिजी दहशतगर्द मारिजी विया। हथियार ऐं बारूदी मवाद बि हथ कयो वियो।
2: तो लोगों को मौजूदा जमहूरियत के सम्राट इंतकिल करने का जो वाहिद टूल है वो एक एम्पावर्ड इफेक्टिव